सुप्रभात। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। आज दिन रविवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की तिथि 7, तदनुसार 28 जून सन 2026 है। इस समय सुबह के 5:58 हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन।

0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब समाचार सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में।
1: समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमानी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर टेकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे, जिससे कल्याणकारी योजनाओं की ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के कार्य को बेहतर बनाया जा सके। इस कार्यक्रम से पहले गृहमंत्री अहमदाबाद के चांदलोडिया में साबरमती विधानसभा क्षेत्र

0: के बूथ अध्यक्षों और शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वह सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर था उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को चेतावनी दी है कि अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत नियामक कानून लाएगी, जिससे कड़ी निगरानी, अधिक जवाबदेही और छात्रों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की रिपोर्ट ईमेल, संदेश या फोन से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गोवा में 14 वर्षीय एथन वॉज ने बोस्निया और हर्जिगोविना में आयोजित सराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ ही एथन अनुराग महामल और लियोन मेंडोगा के बाद गोवा से तीसरे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। एथन ने 10 ग्रैंड मास्टरों को पीछे छोड़ते हुए ये खिताब अपने नाम किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज सुबह पनामा को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यू जर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगम में और हैरी केन ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर रहा। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में 68,000 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है। लागुएरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि शुक्रवार को एक तेलवाहक जहाज कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Seychelles, Patrick Hermini, today. Both leaders will review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. We have a report.
2: Today, Prime Minister Modi is scheduled to address the National Assembly of Seychelles and interact with members of Indian diaspora. Later, Prime Minister Modi will participate in the National Day celebration at Roche Kemen. The ministry said that a contingent of the Indian Defence Forces, along with two Indian Navy ships, will also take part in the celebrations. Prime Minister Narendra Modi is on a three-day visit to Seychelles to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. This visit reaffirms the strong and enduring friendship between India and Seychelles and strengthens the shared commitment of both nations to enhance bilateral ties across all sectors. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
1: Prime Minister Modi reached Victoria yesterday on a three-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport.

कृषक मित्रों जोहार। आज खेती की बातें कार्यक्रम के अंतर्गत बातें करते हैं मछली उत्पादन के लिए खाद की उपयोगिता के बारे में। किसान भाई बहनों, मछली उत्पादन के लिए खाद का प्रयोग बहुत उपयोगी माना जाता है, क्योंकि यह तालाब में प्राकृतिक भोजन यानी प्लावक को बढ़ावा देती है, जिससे मछलियों को तेजी से बढ़ने के लिए पोषक तत्व मिलते रहते हैं। गोबर, हरी पत्तियां और खल्ली जैसे जैविक खाद पानी की उर्वरता बढ़ाते हैं, जबकि रासायनिक खाद भी आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिससे मछलियों का स्वस्थ विकास और अधिक पैदावार होती है। हालांकि संतुलित मात्रा और सही समय पर इनका उपयोग जरूरी माना जाता है, ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो। मित्रों, मछलियों के उत्पादन के लिए खाद के फायदे जानकर आप प्रफुल्लित हो जाएंगे। पहला फायदा यह होता है कि प्राकृतिक रूप से भोजन का निर्माण होता रहता है।

जी हाँ मित्रों, खाद डालने से फाइटोप्लांकटन यानी पादप प्लवक और जू प्लांकटन यानी जंतु प्लवक बढ़ते हैं, जो मछलियों का मुख्य प्राकृतिक भोजन है। दूसरा फायदा है पोषक तत्वों की पूर्ति। जी हाँ किसान भाई बहनों, खाद पानी देने से नाइट्रोजन, फास्फोरस और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व घुलती हैं, जो मछलियों की वृद्धि के लिए जरूरी होती है। तीसरा फायदा है उत्पादकता में वृद्धि। खाद युक्त तालाबों में मछलियों की वृद्धि सामान्य तालाबों की तुलना में बहुत तेजी से होती है। चौथा फायदा है जैविक और रासायनिक संतुलन। गोबर यानी जैविक और यूरिया यानी रासायनिक का संतुलित उपयोग सबसे अच्छा परिणाम देता है, जिससे पानी और मिट्टी दोनों की गुणवत्ता सुधरती है। पांचवा फायदा है अपशिष्ट प्रबंधन। जी हाँ मित्रों, मछली अपशिष्ट से बनी खाद का उपयोग करके कृषि में भी उर्वरता बढ़ाई जा सकती है, जिससे कचरे का सही उपयोग हो सकता है। कृषक मित्रों, यह तो हुई खाद की उपयोगिता, और आइए अब जान लेते हैं कि किस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं, यानी उपयोग के तरीकों के बारे में जान लेते हैं। मित्रों, जैविक खाद का उपयोग बहुत ही सावधानी के साथ करना चाहिए। जैविक खाद के अंतर्गत गोबर को तालाब के किनारे ढेर बनाकर डालें, ताकि वह धीरे धीरे पानी में घुले। सड़ी पत्तियां भी हरी खाद के रूप में उपयोग में लाई जाएं। उसी तरह से मित्रों, रासायनिक खाद के अंतर्गत यूरिया, कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट और सिंगल सुपर फॉस्फेट जैसी खादें निर्धारित मात्रा में डालनी चाहिए। जैविक खाद के साथ रासायनिक खाद का बराबर बराबर मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, और सावधानियों को भी जरूर अपनाना चाहिए, तभी अच्छी पैदावार भी हासिल हो पाएगी। यह सदैव ध्यान रखें कि दोनों खादों का प्रयोग संतुलित रूप में करना चाहिए। शुरुआत में जैविक खाद और फिर 15 दिन बाद रासायनिक खाद का प्रयोग करना चाहिए। हरी काई यानी प्लैंकटन ब्लूम बनने पर खाद डालना रोक देना चाहिए। मित्रों, आइए अब क्या क्या ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले यह ध्यान रखें कि खाद डालने के बाद पानी का रंग गहरा हरा हो। हरा रंग प्लावक की अच्छी वृद्धि को दर्शाता है। और दूसरा, यह ध्यान रखें कि अत्यधिक खाद से ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिससे मछलियां मर सकती हैं, इसलिए मात्रा का ध्यान जरूर रखें। मछली के भोजन यानी कि खल्ली और चोकर और तालाब की खाद दोनों का सही संतुलन बेहद जरूरी माना जाता है। तो किसान भाई बहनों, यह थी मछली उत्पादन के लिए खाद की उपयोगिता के बारे में चर्चा, जिसे आप खेती की बातें कार्यक्रम के अंतर्गत सुन रहे थे। सभी कृषक भाइयों को पुनः एक बार जोहार।

मछली उत्पादन के लिए खाद की उपयोगिता, इस विषय पर अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इसी के साथ दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है चिंतन। जीवन में अच्छे कर्म हमारे वर्तमान को बेहतर बनाते हैं और एक उज्जवल भविष्य की नींव भी रखते हैं। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। हम ब्रह्मांड में जो भेजते हैं वही किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर आता है। यदि हम अच्छे कार्य करते हैं तो हमें आत्मिक संतुष्टि और प्रसन्नता मिलती है, तनाव और चिंता दूर होती है और जीवन में सकारात्मकता का अनुभव होता है, जिससे हम जीवन को सहजता से जी पाते हैं। चिंतन अभी आप सुन रहे थे। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। हमारा ये प्रसारण आप सुन रहे हैं FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना की शुरुआत देशभक्ति गीत के साथ करते हैं।

संवेद स्वरों में ये देशभक्ति गीत अभी आपने सुना। श्रोताओं, सुबह सुबह भगवान का नाम सभी दुखों को हर लेता है। अगर हमारे भीतर श्रद्धा है तो हमें अष्ट ऐश्वर्य प्राप्त होंगे, और यदि हम श्रद्धावान नहीं हैं तो श्रद्धा अर्जित करने का अवश्य हमें प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, भक्तिमय रचनाएं जब हमारे कानों तक पहुंचती है तो हम अपने ईश्वर से एकाकार हो जाते हैं।

0: संभल संभल पग धरना।
1: मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे हैं भक्ति रचनाएं। कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र के। वंदना में आज के कलाकार हैं मोहम्मद रफी।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गाए इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है रामचरित मानस।

राजा जनक के धनुष यज्ञ में उपस्थित सहसों राजाओं से भी जब शिव का धनुष टस से मस ना हुआ तो ऐसा लगा कि जनक जी की मनोहरिणी कन्या का वरण करने वाले की ब्रह्मा ने सृष्टि ही नहीं की। प्राण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, अतः क्या करूं, कन्या कुमारी ही रहे। राजा जनक का नैराश्यपूर्ण ये कथन सुनकर लक्ष्मण को क्रोध हो आया। जहां एक भी रघुवंशी होता है वहां कोई भी ऐसे वचन नहीं बोलता जैसे अनुचित वचन जनक जी ने कहे हैं। श्री राम के चरणों में सिर नवाकर लक्ष्मण बोले, हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो आपके प्रताप के बल से मैं धनुष को कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना कर पाया तो फिर कभी धनुष और तर्कस को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लक्ष्मण के क्रोध भरे वचन सुनकर पृथ्वी डगमगा उठी, दिक्पाल कांप उठे, किंतु सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और राजा जनक सकुचा गए। श्री राम ने अनुज को शांत होने का संकेत करके अपने पास बिठा लिया। तब मुनि विश्वामित्र ने अत्यंत प्रेम सनी वाणी में कहा, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़कर जनक जी का संताप मिटाओ।

0: रामचरितमानस अभी आप सुन रहे थे। सुबह के 7 बजने वाले हैं, अब समाचार सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग के व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। क्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम में 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि उसे कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों से सहायता के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इनके पास चीन के लिए आवश्यक प्रवेश पत्र और वीजा नहीं है। मंत्रालय ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेज प्राप्त होने तक भारत से यात्रा शुरू न करें। मंत्रालय ने कहा है कि वैध दस्तावेज के बगैर या आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने की उम्मीद में यात्रा शुरू करने से परेशान होने की संभावना बढ़ जाती है। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। रक्षा मंत्रालय ने मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 सैनिकों की शहादत को हाल ही में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए जाने को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि जल्द से जल्द शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। मंत्रालय ने बताया कि तत्कालीन सैन्य संचालन महानिदेशक ने पिछले वर्ष 11 मई को आधिकारिक प्रेस वार्ता में 6 शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। इन सैनिकों को वीरता पुरस्कार भी प्रदान किए गए जिनकी घोषणा पिछले वर्ष 14 अगस्त को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में की गई थी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। भारत के किदाम्बी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका में कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान की योदा योकिमोतो को पराजित किया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सू ले युंग के होगा। फीवा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने पैनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: समाचार बुलेटिन आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, आपको बता दें आज दिन में 11 बजे से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जनता के साथ मन की बात सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:10 पर हम लेकर आएंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के आज के कार्यक्रम में सुनिएगा अनूप जलोटा की आवाज में चंद गजलें। सुबह 7:20 का समय होगा कार्यक्रम लोक गीत का। आज इस कार्यक्रम में आनंद लीजिएगा कुछ भोजपुरी गीतों का। कलाकार होंगी कुमुद अखौरी। सात बजकर 7:35 का समय होता है बांग्ला गीतों के कार्यक्रम सुरांजलि का। आज इस कार्यक्रम में आप सुनिएगा लोपामुद्रा मित्रा की आवाज में कुछ आधुनिक बांग्ला गान।

8:30 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 8:45 पर फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। 9:00 हिंदी में समाचार, 9:05 पर कार्यक्रम सुरंजना और 9:10 पर सुनिएगा प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा। आज रविवार है। 9:30 पर सुनिएगा बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम पल्लव। सुबह 10:00 हिंदी में समाचार और 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार। 10:10 पर विश्व दर्पण, इन तीनों का प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। सुबह 10:20 पर आनंद लीजिएगा कार्यक्रम फिल्म संगीत का। 11:00 का जनता के साथ मन की बात सुनिएगा 11:00 से। बारह पर सुनिएगा कार्यक्रम भावगीत या शीर्षक गीत। 12:30 पर महिलाओं का कार्यक्रम अंगना।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम सुगम संगीत में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। वो मेरा था ये बताना अजीब लगता है, वो मेरा था ये बताना अजीब लगता है, अब उससे आंख मिलाना अजीब लगता है। इसरार अंसारी की लिखी गजल सुनते हैं अनुप जलोटा की आवाज़ में।

घर बैठ के सब पी लेंगे तो मैखानों का क्या होगा, नजरों से गुजारा चल जाए तो पैमानों का क्या होगा। आइए कतील शिफाई की लिखी ये गजल सुनते हैं अनूप जलोटा की ही आवाज में।

इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:20 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक गीत। आज इस कार्यक्रम में आनंद लीजिए भोजपुरी लोकगीत का। कलाकार है कुमुद अखौरी।

कुमुद अखौरी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी गीत। इसी के साथ लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:35 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि। आज इस कार्यक्रम में आनंद लीजिए लोपामुद्रा मित्रा की आवाज में आधुनिक बांग्ला गान का।

0: लोपामुद्रा मित्रा की आवाज में आप सुन रहे थे आधुनिक बांग्ला गान। इसी के साथ बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आइए श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं भेंटवार्ता। विषय है किडनी में खराबी, प्रभावित स्वास्थ्य। भेंटवार्ता कर रहे हैं डॉक्टर प्रभाकर, इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी राजेश कुमार।
1: श्रोताओं, जैसे जैसे उम्र के साथ हम आगे बढ़ते हैं, हमारे शरीर के कई अंगों में खराबी आने लगती है। यदि किडनी में खराबी होती है तो उसका क्या स्वास्थ्य पर असर पड़ता है? स्वास्थ्य चर्चा के आज के अंग में हम बातें करेंगे इसी विषय पर। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं टाटा मेन हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर प्रभाकर। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, किडनी अगर किसी का खराब होता है तो उसका क्या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव उसके शरीर पर पड़ता है?
2: बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अगर किडनी अफेक्ट होता है तो सबसे पहला जो किडनी का जो मेन काम है, जो हमारे शरीर के जितने भी गंदगी है उसकी सफाई करना, वो नहीं हो पाती। इससे क्या होता है, शरीर में जो गंदगी जो किडनी से फिल्टर होती है वो नहीं होने के कारण ब्लड में उनकी मात्रा काफी बढ़ जाती है। इनके मात्रा बढ़ने से उसके कारण बहुत सारे लक्षण आने लगते हैं, जैसे पेशाब कम होना स्टार्ट हो जाता है, शरीर में सूजन आना स्टार्ट हो जाता है, मरीज को भूख लगना कम हो जाता है, उल्टी होने स्टार्ट हो जाता है, शरीर में खून की कमी आने लगती है जिसके कारण मरीज को जल्दी थकावट हो जाती है। किडनी हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। पूरे शरीर का 30% ब्लड सप्लाई जो है किडनी को जाता है। किडनी में अगर असर होता है तो इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पर भी पड़ता है। हमारी जो खून की धमनियां हैं वो भी मोटी हो जाती है, इसके कारण फ्यूचर में हार्ट अटैक होने का चांसेस रहता है। इनके कारण हमारे जो मेन जो कुछ हार्मोन्स हैं जिनको पैराथ हार्मोन बोलते हैं।

0: किडनी द्वारा ही कंट्रोल होता है, जिसका मेन काम जो है वो कैल्शियम जो हमारे खाने में होता है उसको बॉडी के अंदर रखना है। इसके कारण हड्डी कमजोर हो जाती है। अगर आपको किडनी की बीमारी है तो हड्डियों का भी कमजोर होना लक्षण इनके में आता है। और काफी लंबे समय तक अगर किडनी की बीमारी हो तो उसमें कभी कभी आपके डायरेक्टली दिमाग पे भी असर होता है।
1: किडनी खराब होने का कोई सर्टेन एज होता है या अभी किसी भी एज के लोगों में ये पाया जाता है?
0: नहीं, किडनी खराब होने का कोई सर्टेन एज नहीं होता, ये किसी भी आज का किसी भी एज में हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि किस कारण से किडनी खराब हुआ है। मेनली डायबिटीज ब्लड प्रेशर के कारण जो किडनी खराब होता है वो एडल्टहुड में होता है या फिर उम्रदराज लोगों में होता है। लेकिन कुछ कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेज है या फिर कुछ किडनी की बीमारियां जो है मतलब पैदाइशी होती है, ऐसे लोगों में बचपन में भी इनमें खराबी होने के चांसेस रहते हैं।
1: तो किडनी अगर खराब हो गया हो किसी का तो किस तरह का मेडिकल साइंस में उपाय है ताकि उनका हेल्थ जो है वो अच्छा बना रहे?
0: अगर मान लीजिए आपकी किडनी खराब हो गई है तो इनिशियली हम लोग दवा से उसको प्रोग्रेशन को कम करते हैं। हाँ, अब जब ऐसा कंडीशन आ जाता है कि नहीं उनको बाहर से हमको डायलिसिस का सपोर्ट देना पड़ेगा, ऐसे अगर कंडीशन में आ जाते हैं तो हम लोग के पास बहुत सारे ऑप्शन है। गुर्दा का प्रत्यारोपण तो सबसे अच्छा उपाय है क्योंकि उसको लगाने से एकदम आदमी एकदम नॉर्मल हो जाता है और उसका क्योंकि उसका हम लोग बाहर से जो किडनी लगाते हैं उसका फंक्शन एकदम नॉर्मल रहता है तो फिर वो पुराने जैसा बिहेव करने लगता है। अगर मान लीजिए किसी कारण से आप गुर्दा प्रत्यारोपण नहीं करा पा रहे हैं तो अभी दूसरा ऑप्शन भी है। आजकल दो तरह का डायलिसिस हम लोग करने लगे हैं, एक तो पेरिटोनियल डायलिसिस होती है, उसको होम डायलिसिस बोलते हैं। उसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, पेट में एक फ्लूइड होता है उसको डालते हैं और शरीर का गंदगी उस फ्लूइड से एक्सचेंज होता है और उसे हम बाहर निकाल जाते हैं। एक दूसरा तरीका है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में एक हीमोडायलिसिस मशीन आती है, उसके द्वारा हम लोग उसको आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं, उसके द्वारा हम लोग ब्लड को एक बाहर सर्किट में ले जाके फिर उसको प्यूरिफाई कर देते हैं।
1: तो दोनों में कौन ज्यादा फायदेमंद होता है?
0: फायदेमंद मतलब दोनों एक जैसा ही इफेक्ट आता है। पेरिटोनियल डायलिसिस की सबसे अच्छी बात यह है कि आपका गुर्दा का जो रेसिडुअल रीनल फंक्शन है, जो बचा खुचा फंक्शन है, वो काफी लंबे समय तक मेंटेन होता है। और उसमें सबसे अच्छी बात है कि आप उसको घर पे कर सकते हैं, उसके लिए आपको किसी डायलिसिस सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है। जो दूसरा तरीका है वो हीमोडायलिसिस है। हीमोडायलिसिस वगैरह में ऐसे पेशेंट में जिसमें पेशाब नहीं के बराबर हो रहा हो, जो थोड़ा पानी ज्यादा पीते हो, उसमें पानी बार बार निकालना पड़ता हो, तो ऐसे केसेस में हम लोग हीमोडायलिसिस प्रेफर करते हैं। हीमोडायलिसिस में सबसे अच्छी बात यह है कि आप में पानी का रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा नहीं रहता है क्योंकि उसको हम लोग मशीन से निकाल सकते हैं।
1: अगर मान लीजिए किसी का किडनी खराब हो गया हो तो जो खराबी आ गई है क्या उसको फिर से रिवाइव किया जा सकता है?
0: नहीं, किडनी में रीनल फेलियर जो होता है वो एक एक्यूट होता है, एक क्रोनिक होता है। अगर मान लीजिए किडनी में खराबी किसी ऑटोइम्यून डिजीज के कारण हो, किसी इन्फेक्शन के कारण हुआ हो, या किसी दर्द निवारक दवा के कारण हुआ, तो ये रिवर्सिबल होता है, ये ठीक हो जाता है। लेकिन अगर किडनी में खराबी अगर क्रोनिक हो गया हो, जैसे मान लीजिए किसी को लंबे समय से हाइपरटेंशन था, अनकंट्रोल डायबिटीज था, या फिर क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया जो कि इरिवर्सिबल डिजीज हो जाता है, ऐसे केसेस को हम वापस रिवर्ट नहीं कर सकते।
1: डॉक्टर प्रभाकर, आपने काफी महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। उम्मीद है हमारे श्रोता इसका लाभ जरूर उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किडनी में खराबी प्रभावित स्वास्थ्य, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता। भेंटवार्ता करती डॉक्टर प्रभाकर, इनसे बातचीत कर रहे थे राजेश कुमार। इसी के साथ दैनिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM की 102.4 MHz पर।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें

0: करें हर बुधवार दोपहर 12:30 से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो, आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
3: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
2: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
3: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
4: श्रोताओं, आपको बता दें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जनता के साथ मन की बात सुनिएगा आज सुबह 11:00 से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़।

0: समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमेरिकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदांबी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब

0: चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है।
1: Today we have a new national health policy.
2: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है, जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं।
1: 62 करोड़ इंडिविजुअल्स।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
3: महाराष्ट्र में जो TET की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे, वो पेपर भिवंडी में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के DCP जोन 2 पवन बंसोड इनको मिले थे। वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए। कल इस्तेमाल होने वाले TET के 4 पेपर जब्त किए है। आगे की जाँच हमारी चल रही है।
0: इस घटना के बाद आज होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने ये परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
4: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ाने भरी गयी। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर से में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
5: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
6: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
7: हमारे यहाँ डोर टू कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ल्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया
8: मिट्टी में चला।

0: सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने के क्षमताओं को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप में से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज़्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा, जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमेरिका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और हैरी केन के एक एक गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित किया। क्रोएशिया ग्रुप ए में ग्रुप में दूसरे, जबकि घाना तीसरे स्थान पर है। और अब खेल की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी लवली, इन खेल खबरों में शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत के किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकोमोतो को 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सूली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफर सेन से हार गईं। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की, तो गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन में आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमेरिका के वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार, वाणिज्य विभाग तथा डुपोंट सर्कल बिजनेस इंप्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बैंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है, हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गश्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने ट्रस्ट की तरफ से इस आश्वासन को दिया है कि श्रद्धालुओं के मूल्यवान समर्पण सुरक्षित हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भिड़ंत शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के भीतर ही फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए बुरी खबर है। अफगानिस्तान में कल आए भूकंप की खबरें सभी अखबारों में हैं। देशबंधु कहता है, दिल्ली एनसीआर तक डोली

0: संपत्ति। उधर राजस्थान पत्रिका ने वेनेजुएला में भूकंप के बाद तबाही से जीवन की किरण शीर्षक से लिखा है, मलबे से 18 दिन के नवजात को निकाला, राहत और बचाव कार्य तेज। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, देशबंधु की खबर है। पत्र ने इसे भारत की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए लिखा है, अब गगनयान मिशन की तैयारियां तेज। अमर उजाला की खास खबर है, सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली। पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है, 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई। दैनिक भास्कर की खास खबर है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बाजारों में छाछ लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रहे हैं। पत्र कहता है, अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे, छाछ और लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और किदाम्बी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार करेंगे साझा। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा, झारखंड में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लगभग 1,63,73 लाख लोग हुए लाभान्वित। राज्य में आज से शुरू होगा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान। 61 लाख से अधिक बच्चों को पिलाई जाएगी दवा। झारखंड में तेज होगी मॉनसून की गतिविधि। रांची समेत 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। और रांची में आयोजित सुब्रतो कप अंडर 17 बालिका फुटबॉल चैंपियन की विजेता बनी मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय कांके की टीम। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने रांची में कहा कि केंद्र सरकार सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि झारखंड में प्रधानमंत्री जनधन मुद्रा और उज्ज्वला जैसी योजनाओं से करोड़ों लोग लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लगभग 1,73,00,000 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लगभग 39.82 लाख परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।
1: झारखंड में 39,82,000 इतने लोगों को गैस कनेक्शन मिले हैं। इसी तरह मतलब अनेक मुद्दों पर जिस तरह झारखंड में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन यहाँ हमारी सोरेन जी की तो सरकार है और उनको यहाँ बहुमत मिला, वो यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। तो झारखंड अलग बनाने के लिए शिबू सोरेन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और भी नया झारखंड बना है। या ट्राइबल की संख्या बहुत बड़ी है, तो रिपब्लिकन पार्टी जो है ये सभी जाति वर्गों में बढ़ाने का हमारा प्रयत्न है।
0: राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में आज से राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान शुरू होगा। अभियान के तहत राज्य के 61 लाख से अधिक और रांची में 5 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई जाएगी। विस्तृत ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज से राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत राज्य भर के 61 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस दौरान 5 साल तक के बच्चों को खुराक दी जाएगी। रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि रांची में 5 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक देने के लिए 3,893 बूथ बनाए गए हैं। वहीं देवघर जिले में भी पल्स पोलियो अभियान को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। स्वास्थ्य निदेशक शशि प्रकाश झा ने लोगों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से पोलियो रोधी खुराक पिलाएं और अभियान को सफल बनाएं। उधर पलामू के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में 3,97,521 बच्चों को पोलियो रोधी खुराक देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं सरायकेला खरसावा जिले में 2.25 लाख से अधिक बच्चों को खुराक दी जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: पूर्वी सिंहभूम के पोटका प्रखंड में ब्रेन मलेरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अब तक 3 बच्चों की मौत हो चुकी है जबकि 16 नए संक्रमित मिले हैं। गंभीर मरीजों को जमशेदपुर के अस्पतालों में रेफर किया गया है। स्वास्थ्य विभाग प्रभावित गांवों में जांच, उपचार और जागरूकता अभियान चला रहा है। लोगों से तेज बुखार या अन्य लक्षण दिखने पर तुरंत सरकारी अस्पताल में जांच कराने की अपील की गई है। राजकीय श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों को लेकर देवघर उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने कल समीक्षा बैठक की। उन्होंने जसीडी, देवघर और बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशनों पर टिकट काउंटर्स की संख्या बढ़ाने, अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाने तथा सीसीटीवी और अतिरिक्त सुरक्षा बलों के साथ 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ने संभावित भगदड़ की घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी क्राउड मैनेजमेंट प्लान तैयार करने पर जोर दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जमशेदपुर में भाजपा महानगर ने संविधान हत्या दिवस के अवसर पर संगोष्ठी आयोजित की। इस अवसर पर आपातकाल के दौरान जेल में रहे लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया गया और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉ. प्रदीप वर्मा ने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताया।
3: बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की मूल भावना की हत्या करने का अपराध था। एक ऐसा अपराध जिसको हमारी आने वाली पीढ़ियां याद रखें और फिर किसी भी शासक को इस देश में ऐसा करने की हिम्मत न हो, इस दृष्टि से आपातकाल के काला अध्याय का स्मरण करने का ये कार्यक्रम आयोजित है।
0: धनबाद जिले में अवैध खनन और नदियों के किनारे ओवर बर्डन यानी ओबी डंपिंग पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में उपायुक्त आदित्य रंजन ने संयुक्त टीम को पूरे क्षेत्र का निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।
4: दो तीन नदियां हैं जिस पर लगातार शिकायतें आ रही थी, हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया, तो वो सब नदियों का थरो इंस्पेक्शन के लिए एक टीम का गठन किया गया है कि अलोंग द लाइंस ऑफ द रिवर किसी भी तरह की ओबी डंपिंग या माइनिंग किसी भी तरह का एक्टिविटी नहीं हो, और ऐसा होगा तो हम लोग कड़ी कार्रवाई संबंधित एरिया के लिए हो।
0: केंद्र प्रायोजित स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को एक साल बढ़ाने के प्रस्ताव पर 1 जुलाई को राज्य स्तरीय समिति की बैठक आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में पुलिस मुख्यालय से ADGP, IG अभियान सह नोडल पदाधिकारी LWEUE, IG प्रोविजन वित्त विभाग के सचिव और झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुख्य अभियंता शामिल होंगे। झारखंड में मॉनसून की सक्रियता बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने आज रांची समेत 20 जिलों में आंधी, तेज हवा और गरज के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 30 जून से 1 जुलाई तक पूरे राज्य में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। फिलहाल राज्य में सामान्य से 62% कम वर्षा दर्ज की गई है। रांची के मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय कांके की बालिका फुटबॉल टीम ने 65वीं सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट की कांके प्रखंड स्तरीय U17 बालिका प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल, अनुशासित प्रदर्शन और बेहतरीन टीम भावना का परिचय दिया। खिलाड़ियों ने हर मुकाबले में आत्मविश्वास और उत्कृष्ट तालमेल का प्रदर्शन करते हुए यह उपलब्धि अपने नाम की। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में महासचिव चंपत राय के इस्तीफे की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अटकलों पर विराम, चंपत राय और मिश्र का ट्रस्ट से इस्तीफा। हिंदुस्तान ने लिखा है, चंपत राय समेत 2 ने पद छोड़ा। प्रभात खबर की सुर्खी है, नीट के बाद महाराष्ट्र TET का भी पेपर लीक। दैनिक भास्कर ने लिखा है, ईरान का बहरीन में अमेरिका नौसेना बेस पर ड्रोन हमला। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार करेंगे साझा। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा, झारखंड में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लगभग 1 करोड़ 73 लाख लोग हुए लाभान्वित। राज्य में आज से शुरू होगा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान। 61 लाख से अधिक बच्चों को पिलाई जाएगी दवा। झारखंड में तेज होगी मॉनसून की गतिविधि। रांची समेत 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। और रांची में आयोजित सुब्रतो कप अंडर 17 बालिका फुटबॉल चैंपियन की विजेता बनी मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय कांके की टीम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉड पर एक मेल भेजा, रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं, बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डालें। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था, मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी की बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। हमारा ये प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आप हैं प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। फिल्म संगीत सुनेगा बस थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, फिल्म संगीत यानी गीत और संगीत की अपनी दुनिया है। इस दुनिया में वो हर रंग भरे हैं जिससे हमारा जीवन प्रभावित होता है। जब भी हमारा मन सुकून पाना चाहता है तो निश्चित तौर पर ये गीत संगीत उस एहसास को बड़ी शिद्दत से महसूस करा देते हैं। चलिए कुछ ऐसे ही सुकून भरे पल जी लेते हैं इन गीतों के साथ।

उस्ताद राशिद खान की आवाज थी। जब वी मेट फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। इस गीत को लिखा था फैज अनवर ने और संगीतबद्ध किया था संदेश शांडिल्य ने।

लिबास फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गुलजार ने इस गीत को लिखा था और संगीतबद्ध किया था आरडी बर्मन ने। और इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9 बजने वाले हैं, अब समाचार सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: स्थानीय समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। क्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
2: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे

0: ज्यादा नुकसान हुआ है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। किदांबी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमेरिका में कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई उकिमोतो को 22-20, 15-21, 21-19 से हराया। पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सू ली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सेहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क के लाइने क्रिस्टोफरसन से हार गई। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर ग्रुप ए के अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। पुरुष टी20 क्रिकेट में आज बेलफास्ट में भारत का सामना मेजबान आयरलैंड से होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन में मानसून आगे बढ़ सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर। सुबह के 9:05 और 10 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरंजना।

फिल्म लुटेरा का ये गीत आपने सुना, मोनाली ठाकुर की आवाज़ थी। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के थे, संगीत था अमित त्रिवेदी का। दोस्तों, प्रकृति के संग जीने का मज़ा ही कुछ और है। बहरहाल, हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

0: आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक अनोखी पहल, गार्बेज कैफे पर विशेष चर्चा। संवाद में भाग ले रहे हैं इस विशेष पहल के पीछे काम करने वाले रितेश सैनी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आलोक शुक्ल।
2: श्रोताओं नमस्कार। आजकल आप आम देख रहे हैं कि हर चीज में पानी की बोतल लेना हो या कोई भी अन्य पदार्थ लेने हो तो प्लास्टिक की बोतलों में होते हैं या किसी इसी प्रकार के रैपर वाले में उन्हें पैक किया जाता है। तो इससे होने वाला प्रदूषण जो है वो एक बड़ी समस्या है, लेकिन भारत देश के एक छोटे से शहर अंबिकापुर में इस प्रदूषण से निपटने के लिए एक अनोखा उपाय किया गया। इस उपाय में एक अपील की गई कि जो भी यहाँ पे आए, हम उनके लिए रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, प्लास्टिक के जो कचरे हैं, प्लास्टिक की बोतलें हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ हैं प्लास्टिक के जिससे प्रदूषण फैलता है, वो उसे अंबिकापुर के बस स्टैंड में वहां पे लाएं, गौरव पथ पे जो बना हुआ है, और उसके बदले 1 किलो यदि वो कचरा लाते हैं तो उसके बदले उन्हें भरपेट खाना मिलेगा, 1/2 किलो लाते हैं तो उन्हें नाश्ता मिलेगा, खाने में भी क्वालिटी अच्छी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे की गई एक पहल है जो पूरे देश में प्रचारित हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंबिकापुर शहर की ये जो पहल है इसका उल्लेख हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में किया। तो हम बात कर रहे हैं रितेश सैनी जी से। तो सैनी जी, आप ये बताइए कि नगर निगम में जिस तरीके से ये हुआ, तो ये क्या, इसके पीछे की अवधारणा क्या थी, कैसे ये दिशा रहा है?
3: जी देखिए, अंबिकापुर नगर निगम में हम लोग वर्ष 2014 से ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे कार्य कर रहे थे। इसके अंतर्गत अंबिकापुर नगर निगम में हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज मॉडल अपनाया, मतलब शहर में जो कचरा उत्पन्न हो रहा है उसको किसी एक स्थान पे ला करके प्रोसेसिंग करना एक कठिन काम था, तो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में हम इस काम को करें। इसके तहत SLRM प्रोजेक्ट अंबिकापुर में लगाया गया। वहां पे दीदियां जो है वो घरों से डोर टू डोर कचरा संग्रहण करती है। कचरा को संग्रहण करने के बाद SLRM सेंटर में आता है, जहां पे कचरे का अलग अलग श्रेणी में पृथक्करण करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो, पेपर हो, कार्डबोर्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या हजार्डियस वेस्ट हो, तो सबका वहां सेग्रीगेशन होता है। और सेग्रीगेशन होने के बाद उसकी प्रॉपर रिसाइकलिंग के लिए उसको वेंडर्स को सेल किया जाता है। प्लास्टिक वेस्ट एक जो बहुत बड़ी समस्या थी, तो अंबिकापुर नगर निगम में जो SLRM सेंटर है उनसे जो प्लास्टिक संग्रहित होकर के आ रहा है उसको हम लोग प्रॉपरली अलग अलग जो श्रेणी होती है प्लास्टिक की उसमें पृथक्करण करते हैं। पृथक्करण करने के बाद उसकी वाशिंग होती है, वाशिंग होने के बाद उसका दाना बनाने की मशीन जो प्लास्टिक का ग्रेनुल्स बनता है, ताकि हम उस प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकें। प्लास्टिक को जितना ज्यादा अपन रिसाइकल कर पाएंगे वो सर्कुलर इकोनॉमी की ओर एक हमारा अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा। वो प्लास्टिक रिसाइकल होने के लिए दाने का मशीन हमने लगाया। दाना बनने के बाद जो प्लास्टिक के उत्पाद बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो हमसे उस दाने को खरीद रही हैं। तो इतनी व्यवस्था जब बन गई तो उस प्लास्टिक की एक वैल्यू आई। जैसे ही हमने दाना बनाना शुरू किया, दाना बनाने के बाद हमको जब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनसे जब रेट्स मिलना शुरू हुए, तब हमको ये समझ में आया कि इस प्लास्टिक को दाना में कन्वर्ट करने के बाद 30 रुपए से लेकर 60-70 रुपए किलो तक बेचा जा सकता है। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है। गार्बेज कैफे में ये होता है कि लोग अपने घरों में या दुकानों में जो काम करने वाले वर्कर हैं या जो रैक पिकर्स हैं वो अच्छी साफ क्वालिटी की प्लास्टिक इकट्ठा करके ला रहे हैं, तो हमारा पृथक्करण का खर्चा बचा। जो हम लेबरों से अलग अलग प्लास्टिक को कराते, वो प्लास्टिक को अच्छे से इकट्ठा करके हमारे पास ला करके दिया, तो साफ सुथरी अलग की हुई प्लास्टिक हमको मिल गई। तो वो

0: प्रोसेसिंग कॉस्ट था वो हमारा खत्म हो गया, क्योंकि हमारे पास प्लास्टिक पे एंड पॉइंट तक का मैकेनिज्म है। वो प्लास्टिक को हमने सीधे रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, हमारा जो दाना बनाने की फैक्ट्री है वहां पर डाल दिया, जो दीदियां काम करती हैं, दाना बन गया, उसकी वैल्यू लगभग 20 रुपए के आसपास हमारे पास आ जा रही है। अब हमने अंबिकापुर में ये गार्बेज कैफे स्टार्ट किया, क्योंकि ये बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे है। बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे होने के कारण क्या होगा कि अधिकतर लोगों के अप्रोच में है, बस स्टैंड के जस्ट सामने में हमारा एक ऐसा अलार्म सेंटर है। क्योंकि प्लास्टिक घरों से लाया हुआ है या सड़कों से लाया हुआ है, गंदा हो सकता है, रेस्टोरेंट में हाइजीन को भी मेंटेन करना है, तो प्लास्टिक लेके रेस्टोरेंट में नहीं आना होता है, जस्ट रेस्टोरेंट के सामने में रोड के उस साइड हमारा ऐसा अलार्म सेंटर है, वहां पे जाते हैं, वो प्लास्टिक को डिपॉजिट करते हैं, उसका वजन होता है, वजन होने के बाद उनको दीदियां टोकन इशू कर देती है, उस टोकन को लेकर के आपको गार्बेज कैफे में आना है। ये जो टोकन है उसकी वैलिडिटी 7 दिन की होती है, ऐसा नहीं कि आप आज लिए तो आज ही आपको उसको खाना ही है, आप 7 दिन के अंदर कभी भी आकर के उस टोकन को यहाँ जमा करिए और यहाँ पे ये जो रेस्टोरेंट जो चला रहे हैं वो उसके बदले में उनको भरपेट भोजन कराएंगे।
1: ये इस योजना की गार्बेज कैफे की जो शुरुआत हुई वो हुई 2019 में।
0: यस।
1: उस समय कुछ दिक्कतें आई शुरू करने में या लोगों के जो विचार थे वो कैसे थे, उन विचारों को आपने सकारात्मक रूप में कैसे परिवर्तित किया ये बताएंगे सैनी जी आप?
0: इसमें देखिए क्या हुआ था कि 2019 में इसका जो शुरुआत करने का प्रक्रिया हुआ था, तो एक हम लोग एक आईसी एक्टिविटी के अंतर्गत बस स्टैंड परिसर में ही साफ सफाई का एक महाअभियान का आयोजन हम लोगों ने उस दिन किया था। तो जब साफ सफाई का महाअभियान किया गया तो उसमें हमारे महापौर हो गए, नगर निगम के अधिकारी गण हो गए, सारे लोग यहाँ पे थे और सफाई कर्मचारी लोग उसमें स्वीपिंग करके प्लास्टिक के कचड़े को, अन्य सभी कचड़ों को इकट्ठा कर रहे थे। तो वहां पे एक बात आई कि क्या इस कचड़े के बदले में हम लोगों को कुछ इंसेंटिव मिल सकता है क्या? तो उस समय जो अधिकारी गण थे उन लोगों ने कहा कि यदि आप इस जो सबसे अच्छा प्लास्टिक इकट्ठा करके लाएगा उसको आज मेरी ओर से खाना। तो इस तरह से एक चीज समझ में आई कि नहीं ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। फिर दूसरा इसको आगे बढ़ने का हमने इसलिए उम्मीद किया क्योंकि प्लास्टिक की वैल्यू हमको ये समझ में आ गई कि जब अगर प्लास्टिक का प्रॉपर आपके पास सेग्रीगेशन है, आपके पास दाना बनाने की मशीनें हैं और आपके पास वेंडर है, आप प्लास्टिक को कहाँ बेच सकते हैं, सही मूल्य अगर अपने को मिल रहा है तो हम इसको सस्टेन कर सकते हैं। कि अगर मान लीजिए 1 किलो प्लास्टिक जो सामान्य रूप से कोई 2 रुपए किलो में बेच रहा होगा, हमारे पास आके प्रोसेस होकर 30-40 रुपए किलो में जा रही है, सारे खर्चों को काट करके अगर 1 किलो प्लास्टिक में 20 रुपए में मेरा बच रहा है तो उस 20 रुपए में इस रेस्टोरेंट वाले को दूंगा। ये रेस्टोरेंट प्राइम लोकेशन पे है, यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो खाने आते हैं उनके अलावा अन्य जो यात्रीगण आते हैं उनको भी ये खिला सके, इसलिए उनकी ओर से भी क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता
1: है। ये माने ऐसा नहीं है कि खाली जो कचरा लेके आ रहे हैं उनके लिए, ये सभी के लिए है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो उसके लिए भी एक रेट है,
0: उसके लिए यहाँ पे रेट है, आप पैसा देके भी खा सकते हैं और जो गार्बेज कैफे में जो प्लास्टिक जमा करके टोकन ला रहे हैं वो भी खा सकते हैं। अब यहाँ पे टोकन वालों के साथ कोई भेदभाव ना हो, ये ऐसा ना हो कि इनको हमने दे दिया और ये केवल जो पैसा दे रहा है उसको पहले दें, टोकन वालों को बाद में दें, तो इसके लिए हम लोगों ने इनके साथ एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ है कि 2 सीट हमेशा, 2 टेबल मतलब 8 व्यक्तियों के बैठने की जो अरेंजमेंट है वो हमेशा रिजर्व रहेगा। क्योंकि ये संभावना है, हो सकती है ऐसी संभावना कि वेंडर ने तो कम रेट पर ले लिया इसको और उसने कहा कि 20 रुपए मेरे को आप टोकन का रिडीम आप करेंगे, बाकी कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा। तो उस समय ऐसी परिस्थिति ना बन जाए कि केवल बाहर वाले लोगों को ही वो खिला रहे हैं, जो टोकन लेकर के आ रहे हैं वो या तो सड़क से कचरा बीनने वाले होंगे या कुछ होंगे, तो उनके साथ भेदभाव हो ऐसी स्थिति ना बने। तो इनको ये कहा गया कि आपको 2 टेबल रिजर्व रखना है, आप कभी भी मतलब उनको वापस नहीं भेजोगे।
1: आप ये बताइए कि इसमें से प्रतिदिन कितना आय हो जाता है यहाँ पे?
0: जब देखिए हमने इस गार्बेज कैफे की शुरुआत की थी तो शुरुआत के 1-2 महीने में तो दो तीन लोग आ रहे थे, उसके बाद फिर काफी अच्छा लोगों यहाँ आना शुरू किया, 15-20 टोकन 30 टोकन 40-50 टोकन तक पर डे जाना शुरू हुआ। अभी भी मतलब हर दिन लगभग 8-10 टोकन कंटिन्यूअसली आते जाते हैं। कई बहुत अच्छे इसमें आप एग्जाम्पल भी देखेंगे कि एक रैक पिकर है जो दुकानों से मार्केट जब बंद होता है तो प्लास्टिक इकट्ठा करता है, वो प्लास्टिक इकट्ठा करके आता है यहाँ पे जमा करता है जैसे 1 किलो 2 किलो 3 किलो और टोकन इकट्ठा करता है। तो उसने एक बार रिक्वेस्ट किया था कि सर एक टोकन मिलता है मान लीजिए मेरे को तो मैं अकेले खाना चाहता हूँ, क्या मैं 3-4 दिन इकट्ठा करके 5-7 टोकन कर लूं और अपने परिवार बच्चे लोगों को लेकर के आ जाऊं, तो मेरे बच्चे लोगों को मैं कभी रेस्टोरेंट नहीं ले जा पाता है ना, तो ऐसा क्या मैं कर सकता हूं? तो उसके लिए फिर आयुक्त महोदय का बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, 7 दिन टोकन की वैलिडिटी वाला जो कॉन्सेप्ट आया, पहले तो एक ही दिन था कि आज आप लोग जाओ खाओ चले जाओ, फिर उसमें उन्होंने कहा नहीं 7 दिन तक आपका टोकन वैलिड रहेगा।
1: जो गरीब परिवार है खासकर जो कचड़े का जो संग्रह करते हैं, जो प्लास्टिक को बीनते हैं, जो हमें प्रदूषण मुक्त समाज की एक मुख्य अवधारणा है, जो गरीब तबके के लोग जो संग्रह करते हैं उनके लिए देखिए कितनी अच्छी पहल है।
0: होटल वाला भी ये करता है कि आप बच्चे का यदि चाउमीन खाने का मन है, इडली खाने का मन है, तो जरूरी नहीं कि आलू बंडा समोसा ही आप खाइए, आप 2 टोकन दे दीजिए तो उसके बदले में, तो ये हो गया कि मतलब वो भी अब अपने फैमिली को रेस्टोरेंट लेकर के आ सकता है और सम्मान से बैठ करके खा सकता है। तो ये इस तरह के भी कुछ एग्जांपल्स इसमें निकल करके आए हैं। तो ये एक अच्छा हमको हुआ कि प्लास्टिक तो आ ही रहा है, ऑलरेडी हम लोग घरों से भी प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं, डोर टू डोर कलेक्शन में प्लास्टिक मिल रही, सारे की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। एक मोड ये भी है कि इसके माध्यम से प्लास्टिक भी हमको मिल जा रहा है और साफ सुथरी प्लास्टिक जहां प्लास्टिक को जाना चाहिए, जो उसका वैधानिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में हम डिस्पोजल कर पा रहे हैं।
1: ये जो पानी भी आप देते हैं तो स्वच्छ पानी
0: जी
1: वो लोगों को उपलब्ध कराते हैं,
0: स्वच्छ पानी उपलब्ध कराते हैं, यहाँ पे आरओ भी लगा हुआ है इनके पास, इसके अलावा ये वाला बॉटल भी, मतलब कि ऐसा कोई अनहाइजीन सिचुएशन यहाँ ना क्रिएट हो, उन सब चीजों का स्पेशल ध्यान भी इनके तरफ।
1: सनी जी

0: महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि इस पहल को प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में पूरे देश के समक्ष किया, प्रभाव यह पड़ा कि विदेशों में भी इसकी चर्चा हुई, और कोई शहर महानगर इस अवधारणा को स्वीकार करते हैं और आपसे सहयोग चाहते हैं?
1: बिल्कुल,
0: या ऐसा कोई मामला सामने आया, ऐसा कोई विषय सामने आया कि जो और कोई शहर के भी लोग आपसे कांटेक्ट किए हैं?
1: जी बिल्कुल, दिल्ली जो है भारत की राजधानी है और दिल्ली में शायद 27 से 28 गार्बेज कैफे आज के डेट में हो चुके हैं। तो 2019 में जब हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया था तो 21 संभवतः दिसंबर के आसपास दिल्ली से यहाँ एक्सपोजर विजिट के लिए भी आए थे, वहाँ पे दिल्ली में भी उन्होंने गार्बेज कैफे चालू किया है। इसके अलावा और भी कुछ कुछ ऐसे शहर हैं जो गार्बेज कैफे के बारे में बहुत सारी डिटेल्स हमसे ली, यहाँ तक कि जो हमारे CAG होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो जब इस डिपार्टमेंट को पता चला कि ऐसा कोई इनिशिएटिव चल रहा है तो फाइनेंशियल इसके क्या सिचुएशन है, क्या ये सस्टेन हो पाएगा कि या इसको सब्सिडाइज करके करना है और जगहों पर लागू करना, तो CAG ने भी इस पर विस्तृत हम लोगों से पूरा जानकारी लिया और पूरा ऑडिट किया इन सारे चीज़ों का कि कैसे कैसे होता है, कैसे टेंडर किया गया, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे। तो CAG ने भी इन सब चीज़ों को ऑडिट करके आगे लोगों के लिए एक मॉडल के रूप में, गाइडलाइन के रूप में गार्बेज कैफे का दिया हुआ।
0: गार्बेज कैफे का जो सबसे अधिक लाभ, या कहें कि ये जो पहल आपने की, सबसे अधिक लाभ किस वर्ग को मिला, किसे मिला, समाज के किस तबके को मिला?
1: समाज के उस तबके को मिला जो ऑलरेडी प्लास्टिक पे काम कर रहे हैं, अब पहले भी करते थे, रैक पिकर लोग अभी भी दुकानों से ले रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ में आया कि मैं दिन भर इकट्ठा करके, क्योंकि एक किलो बोलने में बहुत हमको हल्का लगता है, लेकिन जब आप प्लास्टिक की बात करेंगे, एक किलो लोहा और एक किलो प्लास्टिक में बहुत अंतर होता है। एक किलो प्लास्टिक जब हम इकट्ठा करने जाएंगे तो पता चलेगा आधा बोरा भर गया, और साफ सुथरी प्लास्टिक लानी है। इसमें हम लोग एक ये भी करते हैं कि प्लास्टिक आपको कौन सी लानी है कि आप यूज़ करें। मेन हमारा ये इनिशिएटिव है कि सड़कों से उठाना या नालियों से उठाना वो नहीं है, प्लास्टिक को आप फेंकें ना, आप प्लास्टिक का यूज़ किए, आप प्लास्टिक को स्टोर कीजिए, एक किलो हो गया गार्बेज कैफे में डिपॉजिट कीजिए, टोकन लीजिए, खाना खाइए।
0: तो ये दिन पे दिन ये जो प्लास्टिक संग्रह है बढ़ रहा है?
1: नहीं,
0: क्या है,
1: प्लास्टिक संग्रहण तो बढ़ रहा है, देखिए प्लास्टिक कचरे में वृद्धि भी हो रही है, प्लास्टिक के अल्टरनेट भी अब आते जा रहे हैं, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं मार्केट में हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचरे का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे बहुत सारे चीज़ों में हम देख रहे हैं कि डिस्पोजेबल आइटम जो है वो अल्टरनेटिव आना शुरू हो गए, जैसे जो कागज की प्लेट्स आती थी अब वो प्रेस मड की प्लेट आ रही है, मतलब वो गन्ने से बना हुआ प्रेस मड है जो डिस्पोजेबल हो सकता है, जिसका हम लोग खाद बना सकते हैं,
0: जैविक है
1: वो, ऑर्गेनिक है वो।
0: और बड़ी बात सामने आ रही है कि जो प्लेटें जो पहले प्लास्टिक की रहे या थर्मोकोल की रहती थी, अब लेकिन वो जो गन्ने के छिलके से बनी प्लेटें हैं ये बता रहे हैं कि वो ज्यादा आ रही हैं, और वो क्या होती हैं कि वो नष्ट भी हो जाती हैं प्राकृतिक रूप से, क्यों, क्योंकि पूरी तरीके से जैविक होती हैं। क्या क्या चीज आप यहाँ पे देते हैं?
1: यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो आते हैं उनके साथ साथ जो पब्लिक बस स्टैंड में आ रहे हैं यात्रीगण, उन यात्रीगणों के लिए भी यहाँ पे सुविधा है, तो यात्रीगणों के आधार पे वेंडर को जो लगता है कि यहाँ पे जैसे गर्मी का सीजन है तो लस्सी होना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक होना चाहिए, या लंच में और कुछ कुछ आइटम है तो सारे आइटम ये बनाते हैं। तो जो गार्बेज कैफे का मेनू है तो फिक्स है कि उसमें आपको खाने में क्या क्या देना है, नाश्ते में क्या क्या देना है, उसके अलावा जो अलग से आ रहे हैं यात्रीगण वो जो यहाँ अवेलेबल है उस ऑर्डर देकर के ले सकते हैं।
0: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया
1: जी,
0: उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा गार्बेज कैफे में?
1: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि एक तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए, कुछ पहले भी चल रहा था अंबिकापुर में, लेकिन मन की बात में आने के बाद और लोगों को पता चला कि गार्बेज
0: कैफे पड़ा,
1: बिल्कुल असर
0: वृद्धि हुई है,
1: उससे भी वृद्धि हुई है। दूसरा इनके प्रति सपोर्ट भी पड़ा कि एक हमारे शहर की का जो एक सम्मान की बात है कि शहर के बारे में प्रधानमंत्री जी अगर चर्चा कर रहे हैं तो उससे लोगों के मन में भी एक आया कि नहीं ये अच्छी इनिशिएटिव, इसको और बढ़ाना चाहिए। ये भी बात आई कि शहर के और दूसरे हिस्सों में भी हम चाहें तो अगर स्पेस अवेलेबल हो तो चालू कर सकते हैं इसको, ना केवल प्लास्टिक, अगर और भी कुछ इनिशिएटिव करना चाहे तो उस पर भी हम लोग विचार कर सकते हैं आगे चल करके।
0: मैं देख रहा हूँ कि अगल बगल भी होटल हैं, कई जो पुराने होटल हैं बड़े होटल वो स्थापित हैं, उसके बाद भी आपका ये अच्छे से चल रहा है होटल, तो जनता का जो भरोसा है, जो एक कई सामाजिक जो मेहनत कश लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन्हें भी एक भरपेट भोजन मिल जाता है कि या कहें कि एक ऐसे शहर में आके कि कचरा इकट्ठे कर लो तो उन्हें खाने के कम से कम दिक्कत नहीं होती।
1: सबसे बड़ी बात यह होती है कि उनके मन में एक तो जो हेजिटेशन रहता है ये रेस्टोरेंट में कैसे जाएंगे या क्या करेंगे, जब उनको पता चला कि ये रेस्टोरेंट हमारे ही लिए बना है, गार्बेज लाना है, गार्बेज देकर करना है, तो एक उनका भी हेजिटेशन भी वो हो रहा है। दूसरा चीज, रेस्टोरेंट को मेंटेन रख रहे हैं वेंडर, नगर निगम से भी निरीक्षण हो रही है, पूरा हाइजीन मेंटेन रख रहे हैं, साफ सफाई मेंटेन रखना है सारा चीज, तो यहाँ पे खाने में किसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है कि किसी प्रकार की कोई गंदगी है, किसी प्रकार की कोई यहाँ पे समस्या आ रही हो, तो वो सब चीजें नहीं।
0: तो अब एक चीज और कहना चाहूंगा कि देखिए एक आजकल इकोनॉमिक युग है, तो दिन पे दिन इससे लाभ बढ़ रहा है, उसका क्या अनुपात है आप बताएंगे पहले में और अब में?
1: इसका जो इकोनॉमिक व्यू है गार्बेज कैफे संचालन का, एक तो ये दृष्टिकोण है कि प्लास्टिक हमारे पास आ जाए और रिसाइकलिंग हो जाए और उसको व्यक्ति को भोजन मिल जाए। शुरू में तो हम इसको सब्सिडी में चलाने का हम लोग को लग रहा था कि इसमें नगर निगम को हर टोकन पे कुछ पैसा हम लोग को पे करना पड़ेगा, तो इसमें हमने क्या किया कि एक तो ये प्राइम लोकेशन है, यदि इसको हम लोग बिड करते, टेंडर करते, कोई बड़ा व्यापारी इसको लेता तो काफी पैसे में ये बिक्री हो सकती थी, तो इसका एक सब्सिडाइज रेट हमने रखा।

0: कि जो गार्बेज कैफे लेगा उसमें सबसे ज्यादा हमको ये लिख करके कौन देगा कि सबसे मैं कितना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ। अगर मान लीजिए एग्जांपल लूँ कि 40 रुपए की प्लेट है तो 40 रुपए की प्लेट में मैं कितना छूट दे सकता हूँ, ये बिड का आधार था, ना कि ये बिड का आधार था कि मैं 5 लाख की दुकान को 15 लाख में लूंगा। ठीक है, तो वो हम लोगों ने फिक्स किया था कि भाई यहाँ पे आपको केवल और केवल 5 लाख रुपए का ये जो प्रीमियम है वो देना होगा, और जो मंथली रेंट है ना, क्योंकि आर्थिक नुकसान भी निकाय को नहीं होना चाहिए, तो जो मंथली रेंट है वो दूंगा, लेकिन प्रीमियम बिड को हम लोग फिक्स कर दिया था, उसकी जगह हम लोगों ने ये बिड रखा था कितना डिस्काउंट देंगे। तो जैसे इन्होंने 50% का डिस्काउंट दिया कि यदि मेरी भोजन की प्लेट 50 रुपए की है तो 25 रुपए का कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा। इसने मैक्सिमम लिमिट भी दिया कि एक दिन में अधिकतम 30-40 लोग तक का मैं करूंगा, उसके ऊपर होगा तो आपको फुल पे करना होगा, ये उन्होंने दे दिया। दूसरा, प्लास्टिक जो हमारे पास आ रहा है हम उसकी वैल्यू देख रहे हैं कि अगर साफ सुथरी प्लास्टिक मेरे पास आती है जिसमें मेरा कलेक्शन का जो खर्च है, छांटने का जो खर्च है, लेबर कॉस्ट, उन सारे खर्च को काटने के बाद सीधा प्लास्टिक मेरे पास ऐसा आ रहा है कि उसको उठा करके सीधे दाना बनाने वाले सेंटर में भेजना है और वो सीधे दाना बन जाएगा, तो दाना बनाने के बाद मेरी जो वैल्यू आ रही है प्लास्टिक की वो भी लगभग 20 से 22 रुपए आ जा रही है। अगर साफ सुथरी प्लास्टिक हमको मिल रही है तो 20 से 22, तो 20 से 22 रुपए वहां से बच गया, कुछ इन्होंने सबमिट कर दिया। तो ये जो टोकन हमको जमा कर रहे हैं उसका 50% हम पे कर देते हैं, 50% ये डिस्काउंट कर दे रहे हैं।
1: तो संक्षेप में ये बताइए कि एक जो अनुपात है लाभ का अनुपात दिन पे दिन बढ़ रहा है।
0: नहीं, लाभ और नुकसान दोनों इसमें नहीं है, मतलब ये एक अच्छी योजना चल रही है। नगर निगम को लोगों के टोकन पे कोई ना लाभ है ना कोई नुकसान है, बिल्कुल बराबर पहुंच चुके हैं हम लोग। निगम को लाभ क्या है, जो प्रति माह ये किराया दे रहे हैं क्योंकि अपना रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं, तो निगम को जो प्रति माह ये किराया पे कर रहे हैं वो निगम की आय है, राजस्व इस गार्बेज कैफे का।
1: और सबसे बड़ी बात है कि जो आम जन है, आम यात्री हैं, उनके बल पे ये
0: बिल्कुल चल रहा है, बस
1: चल रहा है, बस स्टैंड है। तो ये जो योजना है, ये जो एक पहल है, एक छोटे से शहर से निकलकर दिल्ली में बता रहे हैं अनुकरण करके वहां पे 21
0: लोकेशन पे ऐसा
1: 21 लोकेशन पे गार्बेज कैफे दिल्ली में हो गए, और भी जगह ये धीरे धीरे फैल रहा है।
0: बिल्कुल जानकारी।
1: छत्तीसगढ़ में कितनी जगह है?
0: छत्तीसगढ़ में तो अभी अंबिकापुर में।
1: तो आप देख रहे हैं कि जो रितेश सैनी जी हैं, जो इसके इंचार्ज हैं, ये बता रहे हैं कि ये अंबिकापुर जो छोटे से शहर से 2019 से ये पहल शुरू हुई, आगे और इसे उन्नत रूप देने के लिए और क्या क्या योजनाएं हैं आपकी?
0: अभी हम लोग इसमें जैसे जैसे रिसाइकलिंग बढ़ती जा रही है, हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट पे इतने साल से काम कर रहे हैं, तो नगर निगम अंबिकापुर एक अनुभवी नगर निगम हो गया है वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर। और सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ की स्वच्छता दीदियां हैं, उनका जो योगदान है, मतलब वो घर घर जाकर डोर टू डोर कलेक्शन कर रही है और इस गुणवत्ता के कचरा को लेकर आ रही है कि एकदम साफ सुथरा। सपोज दैट अगर अभी हम और आप एक बॉटल में पानी पिए और वो बॉटल इतना फ्रेश है कि हम लोग पानी पी रहे हैं मुंह लगा करके, और उसको अगर हम एक सही ढंग पे सही तरीके से रख देंगे तो उतना ही साफ स्वच्छ रहेगा जितना खाते वक्त था। तो उस स्तर का कचरा अब हमारे पास आ रहा है दीदियों के माध्यम से। तो अब हम लोग ये एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि क्या और ऐसा कचरा क्या है जिसकी वैल्यू अच्छी हमको मिल सकती है, तो हम सिटीजन के लिए भी कुछ ऐसा और ला सकते हैं कि अगर इस कचरे को आप स्टोर करके साफ सुथरा अगर हमको दे रहे हैं तो हम उसके बदले में कुछ इंसेंटिव दे सकते हैं, ना केवल खाना ही, कुछ और भी इंसेंटिव दे सकते हैं, कुछ हम कूपन इशू कर सकते हैं, कुछ टोकन इशू कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप कोई यदि सरकारी योजना का लाभ लेना चाहें, या हम ऐसा टोकन इशू कर दें कि आप टॉकीज में जाकर के फिल्म देख सकें। इस तरह से हम लोग और भी
1: टॉकीज में जाकर फिल्म देख सकें,
0: इस तरह की योजना कैसे बच्चों का, सपोज दैट कि बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे प्लास्टिक पेट बॉटल है उसकी वैल्यू अच्छी है, वो 40-45 रुपए किलो तक बिकती है, तो हम ये कर सकते हैं कि उनको कुछ टेक्नोलॉजी सिखा सकते हैं बच्चों को कि आप कैसे इसको अपने घर में कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे एक प्लास्टिक की बॉटल है उसमें यदि हम डेली छोटे छोटे पाउचेस हैं सॉस के, या उसको हम डालते जाए फिर प्रेस करते जाए डालते जाए वो एक भर कितना कंप्रेस हो जाएगा कि कुछ दिन बाद ये पता चलेगा कि वो एक लीटर की प्लास्टिक की बॉटल में आपने 2 किलो प्लास्टिक, और वो छोटा प्लास्टिक है जो नालियों में चला जाता है जिसको सेग्रीगेशन बड़ा करना कठिन है। तो इस तरह के बच्चे का इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो हम उनमें उनको कुछ इंसेंटिव बच्चों को, चाहे वो फिल्म मूवी देख सके कुछ बच्चों से रिलेटेड, या उनको कुछ उनके एजुकेशन से रिलेटेड अपन कॉपी देना चाहे, कंपास देना चाहे, इस तरह के चीजों पे भी
1: कुछ, तो उससे कई अच्छे परिवार के भी जो बच्चे हैं वो भी जुड़ेंगे, मध्यम वर्गीय हैं वो भी जुड़ेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो पहल है ये हर वर्ग के लिए अनुकरणीय हो सकती है, जो छोटी सी पहल इस शहर से निकली।
0: जो मैंने बच्चों के इनिशिएटिव की बात करी तो मन की बात में एक एपिसोड भी आया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट भी किया था। अंबिकापुर में एक स्कूल है होली क्रॉस स्कूल, होली क्रॉस स्कूल के बच्चों ने क्या किया कि स्कूल में जितना भी लोग चॉकलेट या जो भी लेकर के जाते हैं
1: उसके
0: रैपर्स को इकट्ठा करके और अलग अलग कंपनी के कोरियर बनाए और कंपनी को कोरियर कर दिया कि ये आपका कचरा आपको वापस। बच्चे लोगों के दिमाग में ये बात आई कि जब कंपनी हमसे 10 रुपए का 15-20 रुपए का हम चिप्स खा रहे हैं तो उसके कचड़े को कंपनी की रिस्पांसिबिलिटी क्यों नहीं है, उसकी भी रिस्पांसिबिलिटी उनको लेनी चाहिए। तो उन्होंने मतलब ब्रांड वाइज अलग अलग किया, स्कूल में सेग्रीगेट किया और उस ब्रांड को कोरियर कर दिया।
1: एक तरीके से देखा जाए तो बच्चों ने एक प्रेरणा दी और एक समाज को और देश को आईना दिखाया कि यदि आप किसी चीज में कर रहे हैं तो कचड़ा निपटान की भी जिम्मेदारी बनती है। माने कहा जाए तो अब जो देश है वो बदल रहा है और गार्बेज कैफे की जो अवधारणा है वो वास्तव में देखा जाए तो वैश्विक होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है।
0: हैशटैग गार्बेज कैफे सर्च करिए तो आपको तमाम देशों के मिल जाएंगे, उसमें बांग्लादेश से लंदन इटली वगैरह सारे जगह,
1: जापान कोरिया यहाँ से भी
0: सभी जगह
1: प्रशंसा आई थी,
0: प्रशंसा आई थी। अंबिकापुर के ट्वीट को रिट्वीट किया गया, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि ऐसा इनिशिएटिव यहाँ पे ले रहे हैं, और ट्विटर में सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि लगभग विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया है।
1: दोस्तों आज इस महत्वपूर्ण विषय के साथ एक जो यहाँ से यात्रा शुरू हुई गार्बेज कैफे की, तो इस गार्बेज कैफे की जो यात्रा के सबसे प्रमुख जो व्यक्ति हैं रितेश सैनी जी से, उनसे हमने साक्षात्कार किया, इस यात्रा वृतांत के बारे में पूछा, इस रोचक यात्रा के बारे में पूछा, और कई अनछुए पहलुओं का भी इन्होंने पूरा विवरण दिया जो काफी रोचक है। तो आज मुझे यानी आलोक शुक्ल को अनुमति दीजिए। जय हिंद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक अनोखी पहल गार्बेज कैफे पर विशेष चर्चा। संवाद में भाग ले रहे थे इस पहल के पीछे काम कर रहे रितेश सैनी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आलोक शुक्ल। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com। प्रकृति की

प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम पल्लव।

0: जय हिंद बच्चों।
1: जय हिंद दीदी।
0: सभी श्रोता बच्चों का कार्यक्रम में स्वागत। और पल्लव के आज के इस अंक के साथ मैं हमेशा की तरह आपकी सीमा दीदी। इसी समय इसी फ्रिक्वेंसी पर हर रविवार आप सुनते हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम पल्लव।

आपको बता दें बच्चों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको एक संगीत शिक्षक मृणमोय पात्रों से ली गई भेंट वार्ता सुनवाएंगे, जो बताएंगे कि संगीत की शिक्षा बच्चों के लिए क्यों जरूरी है। लेकिन पहले कुछ स्वास्थ्य संबंधी जरूरी बातों पर गौर करें।

बच्चों, हमारे प्रदेश में मॉनसून का आगमन हो चुका है। बरसात का मौसम आते ही भले ही चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलती है, हालांकि ये कई स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी लेकर आता है। बढ़ती नमी, जल जमाव और मच्छरों और अन्य रोगाणुओं के फैलने के कारण बरसात के मौसम में बीमारियां आम होती हैं। इसलिए इन बीमारियों के प्रति जागरूक होना और सावधानी बरतना बेहद आवश्यक है। बच्चों, इस मौसम में सर्दी और फ्लू, पेट का फ्लू यानी गैस्ट्रो एंटेराइटिस, वायरल बुखार, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड, हैजा, पीलिया, इन्फ्लुएंजा, लेप्टोस्पाइरोसिस, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां होना आम बात है। इसलिए हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। हमें व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना जरूरी है। अपने हाथों को खाना खाने के पहले और शौच के बाद साबुन और पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। नाखूनों को छोटा रखना और गंदे हाथों से चेहरे को न छूना भी संक्रमण के खतरे को कम करने में सहायक हो सकता है। बारिश के मौसम में जल भराव और रुके हुए पानी के जमाव की समस्या बढ़ जाती है। ये स्थिति मच्छरों के प्रजनन और पनपने के लिए अनुकूल होती है। इसलिए अपने घर के अंदर और आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। घर में रखे गमले और कूलर सूखे हों, साथ ही गीले और गंदे कपड़े इधर उधर ना पड़े हों। मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल जरूरी है। साथ ही शाम के समय दरवाजे और खिड़कियां बंद रखकर हम मच्छर जनित रोगों से बच सकते हैं। बच्चों, इस मौसम में हमें केवल साफ और उबला हुआ पानी पीना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर स्वस्थ रहता है और फ्लू या सर्दी जैसी बीमारियों से

0: हम लड़ सकते हैं। क्या आप जानते हैं पर्याप्त पानी पीने से शरीर की सफाई होती है और रोगाणु और बैक्टीरिया जैसे विषाक्त पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए जितना हो सके पानी या जूस या सूप जैसे अन्य तरल पदार्थ हमें लेते रहना चाहिए। हमेशा ताजा और घर का बना गर्म खाना ही खाना बेहतर होता है। सड़क किनारे मिलने वाले दूषित खाद्य पदार्थों का सेवन करने से हमें बचना चाहिए। फल और सब्जियों को खाने से पहले अच्छी तरह धो लेना स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। बच्चों, स्वच्छ वातावरण मॉनसून से होने वाली बीमारियों को रोकने में सहायक होता है। कहीं भी जल जमा ना होने पाए, कचड़े का उचित निपटान और साथ ही नालियां और गटर अवरुद्ध ना हो, इस बात का हमें ख्याल रखना जरूरी है ताकि मच्छर ना पनपने पाए। इस मौसम में फंगल संक्रमण आम बात है। गीले कपड़ों से त्वचा भी गीली हो जाती है जो फफूंद के पनपने के लिए आदर्श वातावरण प्रदान करती है और फंगल संक्रमण की संभावना को बढ़ावा देती है। इससे बचने के लिए गीले कपड़े तुरंत बदल लेने चाहिए और शरीर को अच्छी तरह सुखा लेना बेहतर होता है। मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता संक्रमणों से बेहतर तरीके से लड़ने में मदद करती है, इसलिए खान पान पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे विटामिन सी से भरपूर फल सब्जियां और दही जैसे प्रोबायोटिक्स युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। बच्चों, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना और अच्छी नींद लेना भी स्वस्थ रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। बारिश के इस मौसम में हमेशा बाहर निकलते वक्त रेनकोट और छाता अवश्य लेकर निकले और गीले कपड़े तुरंत बदल लें। अगर आप बुखार या सर्दी खांसी से पीड़ित हैं, तो स्कूल बिल्कुल न जाएं। इससे आपकी बीमारी बढ़ सकती है बल्कि अन्य बच्चों पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। बारिश का मौसम खुशियां और स्फूर्ति लेकर आता है, लेकिन अगर हम अभी बताई गई कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो बारिश के मौसम का पूरा मजा भी ले सकते हैं। तो चलिए कागज की नावें बनाकर उन्हें बारिश के पानी में तैरते हुए देखते हैं। लेकिन नीना की नानी की नाव लंबे सफर पर चल निकली है।
1: नाव चली, नानी की नाव चली, नीना की नानी की नाव चली लंबे सफर पे। आओ चली, भागो चली, जागो चली, आओ। ये कैसे चले, लाओ पैसे चले, आहा, खड़े हो जाओ, तीन तीन की लाइन में खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ, सब खड़े, ला ला ला ला ला, लाइन में, लाइन में, लाइन में, लाइन में, लाइन में, लाइन में, तुम भी खड़ी हो जाओ, जा जा जा जा जा उधर लाइन में, हाँ तुम भी आओ ना।
2: मेरे पास पैसा नहीं है।
1: पैसे नहीं है तो चलो लाओ पैसे और लाइन में खड़ी हो जाओ, जब पहले वो तीन फिर दूसरे तीन, तुम भी आओ, पहले लाइन में चले आओ। अब शुरू करते हैं, एक तो नाव चली, नानी की नाव चली, मीना की नानी की नाव चली लंबे सफर पे। सामान घर से निकाले गए, नानी के घर से निकाले गए, इधर से उधर से निकाले गए और नानी की नाव में डाले गए।
2: क्या डाले गए?
1: एक छड़ी, एक घड़ी, एक झाड़ू, एक लाड़ू, एक तंदूक, एक बंदूक, एक तलवार, एक तलवार, एक घोड़े की जीन, एक ढोलक, एक बीन, एक घोड़े की नाल, एक धीवर का जाल, एक लहसुन, एक आलू, एक तोता, एक भालू, एक डोरा, एक डोरी, एक बोरा, एक बोरी, एक डंडा, एक झंडा, एक हंडा, एक अंडा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा, और टोकरी में एक बिल्ली का बच्चा। फिर एक मगर ने पीछा किया, नानी की नाव का पीछा किया, नीना की नानी की नाव का पीछा किया।
2: क्या हुआ?
1: चुपके से पीछे से ऊपर से नीचे से एक एक सामान खींच लिया, एक बिल्ली का बच्चा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा, एक अंडा, एक हंडा, एक झंडा, एक डंडा, एक बोरी, एक बोरा, एक डोरी, एक डोरा, एक तोता, एक भालू, एक लहसुन, एक आलू, एक धीवर का जाल, एक घोड़े की नाल, एक ढोलक, एक बीन, एक घोड़े की जीन, एक तलवार, एक सलवार, एक बंदूक, एक बंदूक, एक लाडू, एक झाड़ू, एक झड़ी, एक घड़ी।
2: मगर नानी क्या कर रही थी?
1: नानी थी बेचारी बुढ़ी बहरी, नीना की नानी थी बुढ़ी बहरी, नानी की नींद थी इतनी गहरी, इतनी गहरी।
2: कितनी गहरी?
3: नदिया से गहरी, दिन दोपहरी, रात की रानी, ठंडा पानी, गरम मसाला।

0: ताला पेट में ताला 16.5-15 23-43-44 75-96-90-37-55-38-30 नंबर 35 गले में रस्सा।
1: बच्चों इस गीत के बाद अब कुछ गौर करने योग्य बातें। क्या आप जानते हैं संगीत की शिक्षा आपके लिए किस प्रकार लाभदायक है? जब आप संगीत सीखना शुरू करते हैं तो आप केवल सुर और गाने ही नहीं सीखते बल्कि आप में ऐसे कौशल का विकास होता है जो आपको स्कूल और जीवन में सफलता दिलाते हैं। चाहे आप गिटार सीख रहे हों या समूह में गा रहे हों या पियानो पर ताल बजा रहे हों, संगीत शिक्षा से छात्रों को अकादमिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से लाभ मिलता है। तो आज हमारे बीच है एक संगीत शिक्षक मृणमोय पात्रो जो बच्चों को संगीत की शिक्षा देते हैं। आइए उनसे जानते हैं संगीत की शिक्षा बच्चों के लिए क्यों जरूरी है। नमस्कार सर।
2: नमस्कार।
1: सबसे पहले आप बताएं कि आप कब से बच्चों को संगीत की शिक्षा दे रहे हैं?
2: करीब करीब 4-5 साल से हम छोटे बच्चे जो 3 या 4 साल के बच्चे हैं वो लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। जैसा हमारे यहाँ सितार, जिटार, हारमोनियम और गिटार, सिंथेसाइजर ये सब सिखाया जाता है।
1: अच्छा, पहले बताएं कि बच्चों को संगीत सीखने से क्या क्या लाभ हो सकता है?
2: संगीत सीखने से सबसे पहले तो उसके मन में एकाग्रता बढ़ता है। 3-4 बच्चे एक साथ सीखते हैं तो उससे सहयोग की भावना आती है, एक डिसिप्लिन आता है कि हाँ हम इतना समय में हमको इसको परफॉर्म करना है, इसको सीखना है, अनुशासन की भावना, एकाग्रता सब आती है।
1: तो बच्चों को ये विद्या क्यों सीखनी चाहिए?
2: ये सीखने इसलिए चाहिए कि जैसा पढ़ाई करता है खाली समय में उसको कुछ तो करना है। जैसा आजकल देखा जाता है कि बच्चे हरदम मोबाइल वगैरह यूज करते हैं, उससे अच्छा है कोई ना कोई शिक्षा ले, या तो आपका इंस्ट्रूमेंटल नहीं तो वोकल, कोई ना कोई शिक्षा लेनी चाहिए आज के डेट में।
1: आजकल देखा जाता है बच्चों में पढ़ाई का बोझ काफी है तो समयाभाव के कारण भी कभी कभी बच्चे संगीत की शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, आप क्या कहेंगे?
2: देखिए समय का कोई अभाव नहीं है, कि माता पिता को बोलना चाहिए कि भाई देखो तुमको संगीत का भी शिक्षा लेना है, कोई भी जैसा इंस्ट्रूमेंट हो या वोकल हो। इससे क्या होगा, उसका माइंड रिफ्रेशमेंट जो एक होता है कि दिन भर एक ही काम करने से आदमी बोर हो जाता है, संगीत से रहने से क्या जो बोर फीलिंग है वो खत्म हो जाएगा, पढ़ाई में भी मन लगेगा।
1: आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, मतलब बच्चों में एक अंदर से रुचि जगती है किसी चीज के लिए कि हाँ हमको ये सीखना है और इसके लिए हमको समय देना है, मेहनत करना है, ये आप बच्चों में देख पाते होंगे अपने स्टूडेंट में?
2: देखिए मैडम ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सब माँ पिताजी चाहते हैं कि उनके बच्चे कुछ ना कुछ सीखे, तो हमारे पास जब बच्चे आते हैं तो हम लोग उसको एक इंस्ट्रूमेंट नहीं, उसको जो इच्छा होता है वो उसको बजाने का कोशिश करता है, उसको फोर्स नहीं करते कि तुमको यही बजाना है। तो उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसके अंदर में माने उसको क्या इंटरेस्ट है। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो बड़े बड़े कलाकार हैं वो लोग पहले शुरुआत में या तो वोकल सीखे थे, बाद में वो सरोद में चले गए, बचपन में शुरू किए थे वोकल से
1: जी।
2: लेकिन बाद में चले गए। उसका एग्जाम्पल है जहीर खान, उसके बाद फिर आपका भूपिंदर सिंह पहले वायलिन बजाते थे उसके बाद चले गए गजल में। तो पता चलता है कि उसका इंटरेस्ट क्या है। जैसा एक बच्चा हमारे पास आया है, उसका मम्मी बोला कि नहीं इसको वोकल खाना है, लेकिन वो देख रहे हैं कि वोकल के साथ साथ वो स्पेनिश गिटार भी बजा रहा है, इसमें उसके अंदर में इंटरेस्ट है। हम लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं उनके मम्मी पापा को बोलना कि देखिए इसके अंदर में ये इंटरेस्ट है, हम लोग इसको ये भी सिखा रहे हैं। बच्चे तो एकदम पानी के तरह होता है, उसको जिस पात्र में रखो उसी का शेप ले लेता है। तो इसीलिए हम लोग हरदम उसका इंटरेस्ट देखते हैं कि क्या कर रहा है, हर बेसिक्स को उसको समझाया जाता है कि देखो तबला का बेसिक ये है, गिटार का बेसिक ये है, हारमोनियम वोकल का बेसिक ये है। तो हम लोग बच्चों को हरदम बेसिक से शुरू करते हैं ताकि वो उसके अंदर में इंटरेस्ट पैदा हो, उसके लिए हम लोग काम करते रहते हैं कि उसको कैसे उसमें इंटरेस्ट आए और उसको जो अच्छा लगे, जो गाना उसको पसंद है, बस उसको पहले उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि देखो ये बजता है, ये तुम गा सकते हो, ये तुम बजा सकते हो। ऑटोमेटिकली क्या करता है वो एक के बाद एक के बाद एक वो आगे बढ़ जाता है। जैसा एक बच्चा आया एग्जाम्पल के तौर पे कि वोकल सीखने के लिए, अचानक उसमें देखे वो तबला बजा रहा है और वो वोकल से ज्यादा तबला को देख रहा है अच्छा बजा रहा है या सितार को अच्छा बजा रहा है, तभी पता चल जाता है कि इसके अंदर में वो जो गुण बाई बॉर्न है, तो तब उसको उस हिसाब से आगे बढ़ाया जाता है।
1: पात्रो जी बहुत से बच्चे संगीत की शिक्षा ग्रहण करते हैं लेकिन निरंतर अभ्यास की कमी देखी जाती है, अभ्यास की कमी के कारण भी कभी कभी वे पीछे रह जाते हैं, आप क्या कहेंगे ऐसे बच्चों से?
2: ये तो सबके साथ होता है, बट रेगुलर लगे रहना पड़ता है। इसका जिम्मेवारी हम माने समाज बोलिए, टीचर बोलिए या मम्मी पापा बोलिए, ये एनवायरनमेंट को तैयार करना है जो हम करते हैं। हमारे यहाँ सभी बच्चे को कभी कभी बोला जाए तुम इंस्ट्रूमेंट मत खरीदो, या तो

0: घर में तुमको प्रैक्टिस करने का उतना जरूरत नहीं, तुम आ जाओ यहाँ पे, जैसा ट्यूशन पढ़ने आता है एक घंटा के लिए। तो हम लोग हर बच्चे को बोलते हैं कि तुम कोई भी टास्क है तो उसको तुम एक मिनट के लिए करो, जैसा हमारा संगीत में अलंकार होता है, इंस्ट्रूमेंट में भी अलंकार होता है, तुम हर चीज को एक मिनट के लिए करो। तो उससे वो मोटिवेट हो जाता है कि अच्छा हमको तो एक मिनट बजाना है। अलंकार 50 ठो है तो ऑटोमेटिकली देखिए वो अगर घड़ी की तरफ देखता है और एक मिनट बजाना है तो 50 मिनट्स बजा लिया। तो ये जो रेगुलरिटी है वो धीरे धीरे धीरे इसको अभ्यास में आ जाता है, तो
1: धीरे धीरे रुचि जगती है,
0: जग जाती है। इसके जिम्मेवार टीचर जो सिखा रहे हैं उसका क्लास का एनवायरनमेंट ऐसा होगा कि उसको मन करेगा कि मेरे को वहां जाना है। हमारे यहाँ बहुत बच्चे हैं कि मम्मी पापा को बोल दे मेरे को छोड़ के आ जाइए वहां पे। ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपना एनवायरनमेंट को या क्लासरूम को कैसे तैयार करके रख रहे हैं, और बच्चे यहाँ पे आके उसको खुशी मिलता है, उसको हर इंस्ट्रूमेंट को छूने को मिलता है, वो हर इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है। हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन भी आता है जैसे एक एक बच्चा है कि हर इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है, तो हमको पूछा जाता है कि आप इसको सब चीज सिखाते हैं, हम बोले नहीं, वो एक इंस्ट्रूमेंट सीखता है और वो देखता है कि ये सब इंस्ट्रूमेंट बजाया जा सकता है तो वो ट्राई करते रहता है, तो हम उसको मना नहीं करते हैं, तुम करो तुम बजाओ, अल्टीमेटली उसको एक चीज पसंद आएगा वो उसी को करता है।
1: सही बात है पात्रो जी, पढ़ाई और संगीत दोनों में बच्चे तालमेल कैसे बिठाएंगे जो सीखना चाहते हैं, समय देना चाहते हैं?
0: मैं थोड़ी देर पहले बताया हूँ कि मैं हर बच्चे को बोलता हूँ कि तुम कोई भी चीज को एक मिनट के लिए करो, पढ़ाई तुम्हारा स्पेशल है उसको तो करना ही है। तो हमारे यहाँ देखिएगा हमारा क्लासरूम में एक लिखा हुआ है, अगर वो तुम आधा घंटा बजाते हो रोज तो तुमको 7 साल लगेगा।
1: अच्छा
0: ठीक है, फिर अगर 1 घंटा बजाते हो तो तुमको 4 साल लगेगा, अगर तुम 2 घंटा बजाते हो तुमको 2 साल में हो जाएगा। ऑटोमेटिकली ये साइकोलॉजी उसके ऊपर लगता है कि अच्छा हम आधा घंटा बजाएंगे, तो जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो उनके पास तो बहुत समय है, तो वो सोचते कि हम आधा घंटा बजा लेंगे तो मेरा हो जाएगा। लेकिन जब उसको टास्क देते हैं वो करीब करीब 50 नंबर्स रहता है। साइकोलॉजिकली उसको बोला जाता है कि तुम 1 मिनट बजाना, तो 1 मिनट बजाते बजाते देखा जाता है वो 1 घंटा रियाज कर लेता है और उसको पता भी नहीं चलता है। जिस तरीके से माँ बच्चे को खाना खिलाते समय बताते या तो दिखा देता है कि देखो चिड़िया देखो, ये देखो गाड़ी जा रहा है, ठीक उसी तरह हम लोग उसको साइकोलॉजिकली बताते हैं कि तुम ये देखो 1 मिनट घड़ी घूम रहा है, सेकंड का है 1 मिनट बजाना, वो बजे वो देखते देखते वो जब उठता है तब देखता है कि बहुत सारा रियाज हो गया मेरा, और जब वो अच्छा से बजाने लग जाता है तब उसको लगता है कि अरे हम तो सीख गए हैं।
1: संगीत के क्षेत्र में भी करियर बनाया जा सकता है?
0: जरूर बनाया जा सकता है, जैसा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से आपका जो स्कॉलरशिप वगैरह देता है उसके लिए तैयारी 13 साल से चालू हो जाता है। हम लोग सबको बोलते हैं कि भाई जो प्रोग्राम है जैसा यही प्रोग्राम है पल्लव है जो वाणी है उसके लिए हम लोग हरदम बच्चे को तैयार करते हैं, जैसा कंपटीशन वगैरह होता है उसको लिए भी टारगेट करते हैं कि देखो यहाँ पे कंपटीशन है तुमको जाना होगा, तो उसके हिसाब से बच्चे लोगों को तैयार करते रहते हैं।
1: हुनर अगर आप में है तो आप कहीं भी आगे सफलता हासिल कर सकते हैं। पात्रो जी संगीत सीखने की शुरुआत बच्चे किस उम्र से कर सकते हैं?
0: अगर सही माने बताया जाए तो हमारे यहाँ तो 1-2 बच्चा है जो खाली चलता है और मुंह से ठीक से बोल भी नहीं पाता, वो भी पहुंच जाते हैं, बैठे रहते हैं, सबको देखते हैं, देखते देखते उसको जो मन करता है वो छूता है, जैसा तबला बजा लिया। बहुत छोटे बच्चे को हम लोग तबला और सिंथेसाइजर देते हैं क्योंकि उसमें मेहनत नहीं है, वो अपने हिसाब से बजाता है। मम्मी पापा लोग भी पहले से ही छोड़ देते हैं बच्चा लोगों को, और हमारा जब क्लास होता है तो हम लोग बच्चा लोगों को अलाउ करते हैं कि आप लोग बैठो बजाओ ऑब्जर्व करो, जब उनको लगेगा कि नहीं मेरे को सीखना चाहिए उसका इंटरेस्ट आता तभी उसको एडमिशन लेते हैं, नहीं तो वो रेगुलर आना जाना करते रहते।
1: आज बहुत से इंस्ट्रूमेंट है जो नाम भी हम नहीं सुने हैं, लुप्त हो गया बोला जाए तो क्या?
0: हाँ लुप्त हो गया है लेकिन अब फिर से आ रहा है, जैसा मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, बिलावहार करके एक इंस्ट्रूमेंट है जो सारंगी और वायलिन दोनों को मिला के बनाया गया है, पंडित बाबूलाल गंधर्व उनको बनाए हैं, का बेटे जो है नवीन गंधर्व जी उसको अभी रेगुलर बजा भी रहे हैं और वो प्रचलन में आ रहा है। ठीक उसी तरह सितार में भी साथ में अभी एडवांस फॉर्म में आपका सितार आया है और उससे ओल्ड थोड़ा सा जाएंगे तो है सुरबहार, तो ये सब चीज का धीरे धीरे प्रचलन हो रहा है। और देखा जाए तो आज के डेट में सबको इंस्ट्रूमेंट और संगीत के प्रति सबको धीरे धीरे रुझान हो रहा है, क्योंकि आदमी को हर बच्चे को मेंटल पीस चाहिए और मेंटल पीस के लिए म्यूजिक एक बहुत अच्छा जरिया है। जब आप थक जाते हैं या पढ़ाई से थोड़ा सा लगता है बहुत पढ़ लिए हैं थोड़ा रिलैक्स चाहिए, तो उसके लिए संगीत एक अच्छा जरिया है। तो इसीलिए बच्चों के लिए संगीत का जो शिक्षा है बहुत जरूरी है, आगे चल के उसका डेवलपमेंट और उसका जीवनचर्या में बहुत लाभ होता है। हमको तो लगता है कि बच्चों को संगीत की शिक्षा जो है शुरुआत से करनी चाहिए। थोड़ा सा ही सीखे, अलंकार ही बजाए, एक राग बजाए, एक गाना करे, लेकिन बजाए जरूर थोड़ा सा, 10 मिनट। वही तो हमारा रूल एक ही है, 1 मिनट, कोई भी चीज को 1 मिनट बजाओ तो देखा जाता है कि 1 मिनट करते करते वो कब 1 घंटा पार हो जाता है उसको पता भी नहीं चलता है। बाद में धीरे धीरे उसको लगता है कि नहीं, ये तो मेरा दिनचर्या का एक पार्ट है, एक हिस्सा है।
1: पात्रो जी, संगीत वो कुंजी है जिससे लोगों का मन मोहा जा सकता है, अपनी अलग पहचान बनाई जा सकती है। वैसे भी शास्त्रीय संगीत हमारे देश की धरोहर है, इसे संजो कर रखना हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, बच्चे इस क्षेत्र में आए, इसके लिए क्या किया जा सकता है, क्या प्रयास हो सकता है?
0: सरकार बहुत तरह का प्रयास कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। जिस तरीके से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि इंस्ट्रूमेंट का खरीदना, सीखना तो सब कोई चाहता है, शिक्षक को फी है वो देना चाहता है, बट इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए वो लोग सोचता है मेरे से होगा या नहीं। ये हमारा जो मेन मोटो है, हम उसको बोलते हैं कि तुमको इंस्ट्रूमेंट खरीदने का जरूरत नहीं है, तुम पहले हमारे यहाँ आओ, आके आप बैठो, बैठ के देखो, इंस्ट्रूमेंट बजाओ, बजाते बजाते जब उसको लगता है हम बजा सकेंगे तब जाके मन होगा तो खरीद सकता है, नहीं मन हो खरीदने का जरूरत नहीं है, आप यहीं आके प्रैक्टिस, इंस्ट्रूमेंट का कोई जरूरत नहीं है, आप आओ और प्रैक्टिस करो। कोई कोई फीस भी नहीं दे सकते हैं हम उसको, और अच्छे से तैयार करके उसको नेशनल स्कॉलरशिप के लिए तैयार करते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि आप संगीत के क्षेत्र में बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कैसे आगे बढ़े संगीत के क्षेत्र में। अंत में हम पूछना चाहेंगे, जो बच्चे संगीत सीख रहे हैं या कोई वाद्य यंत्र बजाना सीख रहे हैं, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जो भी सीख रहे हैं, पहले से सीख रहे हैं, आगे सीखना चाहते हैं, अगर जो भी इंस्ट्रूमेंट उसको अच्छा लगे वो उसको रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस का थियोरी एक ही मैंने पहले भी बताया, बहुत देर बजाने का जरूरत नहीं है, आप हर टॉपिक को 1 मिनट करके बजाओ और 1 मिनट करते करते देखेंगे आपको लगेगा कि अरे हम तो बजाना सीख गए हैं।
1: अभ्यास बहुत जरूरी है। हाँ,
0: कि कोई सोचता है कि मेरे को 8 घंटा रियाज करना चाहिए, जो भी टॉपिक है आपको, जो भी आपके शिक्षक दिया है उसको 1-1 मिनट बजाते रहो, लेकिन रेगुलर बजाओ, वो अभ्यास हो जाएगा और उसको लगेगा कि नहीं ये मेरा दिनचर्या है।
1: निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। बहुत अच्छी बात है कि बच्चों के मन में आप शास्त्रीय संगीत और वाद्य यंत्रों के प्रति रुचि पैदा कर रहे हैं और उन्हें बहुत ही लगन और मेहनत के साथ सिखा भी रहे हैं। तो संगीत की शिक्षा बच्चों के लिए क्यों जरूरी है, मृणमय पात्रो जी आपने बहुत अच्छी बातें बताई, बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार, धन्यवाद।
1: संगीत की शिक्षा बच्चों के लिए क्यों जरूरी है, इस बारे में अभी हमें बता रहे थे एक संगीत शिक्षक मृणमय पात्रो। उम्मीद है बच्चों आपको ये बातचीत उपयोगी लगी होगी।

0: बच्चों, आज के इस कार्यक्रम में हमने बरसात में होने वाली आम बीमारियां और बचाव के बारे में बातें की। संगीत की शिक्षा बच्चों के लिए क्यों जरूरी है, इस बारे में हमें संगीत शिक्षक मृणमोय पात्रो ने विस्तार से बताया। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता स्थिर चंपी। बच्चों, इसके साथ ही आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। सीमा दीदी को दीजिए अनुमति।
1: जय हिंद बच्चों।

0: बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम पल्लव अभी आप सुन रहे थे।
1: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ता

0: तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
0: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
0: 8700001-4242।
2: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10 बजने वाले हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, उसके बाद अंग्रेजी में समाचार। 10:10 पर सुनिएगा विश्व दर्पण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। क्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री आज 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वो सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
3: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के एक महत्वपूर्ण दौर में श्री राव ने भारत की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे जिसमें काफी नुकसान हुआ। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है। लागुएरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि

0: FIFA World Cup, DR Congo created history by reaching the knockout stage of the FIFA World Cup for the first time after defeating Uzbekistan 3-1 in Group K clash at Atlanta Stadium this morning. Yohan Weser scored twice in the second half, while Fiston Mayele added another goal to seal the victory. In another Group K fixture, Portugal and Colombia played out a goalless draw at Miami Stadium in Florida this morning. In the round of 32, Portugal will face Croatia in Toronto on Friday. And that is the end of this news bulletin.
1: Namaskar, Akashwani se Vishw Darpan ke saath main Lavleen Nigam. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे. वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे. विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों से सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है. अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए. वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हुई और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे. दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे. एक रिपोर्ट.
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे. विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे. प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं. यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है. साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है. अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कंपनियों से कहा है कि वे यूनाइटेड किंगडम की कंपनियों के साथ अपने संबंध मजबूत करें ताकि भारत यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत मिल रहे नए मौकों को लगातार बिजनेस ग्रोथ में बदला जा सके. उन्होंने लंदन में भारत यूके पार्टनर्स इन प्रोग्रेस बिजनेस प्लेनरी की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इस प्लेनरी ने दोनों देशों के प्रमुख उद्योग प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को मजबूत करने के लिए CETA का क्रांतिकारी फ्रेमवर्क के तौर पर स्वागत किया. विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें. हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध पर जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं.
3: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे. इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है. मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें. उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है. मंत्रालय ने श्रद्धालुओं से कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है. मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है. रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
1: रक्षा मंत्रालय ने मीडिया सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 सैनिकों की शहादत को हाल ही में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए जाने को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया गया है. मंत्रालय ने कहा है कि जल्द से जल्द शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई. इन सैनिकों को वीरता पुरस्कार भी प्रदान किए गए थे जिनकी घोषणा पिछले वर्ष 14 अगस्त को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में की गई थी. विश्व दर्पण समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं. ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं. अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के

0: निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। एक रिपोर्ट।
1: इस हमले से दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। सेंट्रल कमान ने कहा कि ईरान ने ड्रोन से तेल टैंकर कीकू पर हमला किया। ये टैंकर होर्मुज़ जल डमरू मध्य से गुजर रहा था और इसमें 20 लाख बैरल से अधिक कच्चा तेल था। अमेरिका ने कहा है कि ईरान ने तेल पोत पर हमला करके संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने होर्मुज़ के ठीक उत्तर में विस्फोटों की सूचना दी है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं फरहत नाज।
0: वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। जापान में आज सुबह 6.1 की तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र इवाते प्रांत के तट से दूर लगभग 40 किलोमीटर की गहराई पर था। सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। तत्काल कोई नुकसान या किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि तूफान के दौरान आए भूकंपों की श्रृंखला से भूस्खलन की आशंका बढ़ गई है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने चेन्नई बंदरगाह से भारत आ रहे अवैध पटाखों की तस्करी के दो प्रयासों को नाकाम किया है। ये पटाखे चीन में बनाए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि अधिकारियों ने चीन से आ रहे दो कंटेनरों को जब्त किया जिनमें ट्रॉली बैग और स्प्रेयर लदे होने की सूचना दी गई थी, लेकिन जांच में पाया गया कि कंटेनरों में लगभग 46,000 पटाखे छिपाए गए थे। एक अन्य मामले में चेन्नई सीमा शुल्क विभाग ने चीन के पटाखों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भी पर्दाफाश किया है। अमेरिका के वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार, वाणिज्य विभाग तथा डूपोंट सर्कल बिजनेस इंप्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बैंगनपली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: महोत्सव में भारतीय आमों का स्वाद चखने के लिए बड़ी संख्या में लोग कतारों में खड़े नजर आए। इनमें से कई ने अमेरिका में प्रीमियम भारतीय किस्मों की व्यापक उपलब्धता की मांग की। भारतीय राजदूत विनय मोहन पात्र ने कहा कि इस वार्षिक महोत्सव का पिछले कुछ वर्षों में तेजी से आकर्षण बढ़ा है। भारत विश्व में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसका अमेरिका को होने वाला निर्यात तेजी से बढ़ रहा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: किदाम्बी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमेरिका में कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकुमोतो को 22-20, 15-21, 21-19 से हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स के अन्य सेमीफाइनल मुकाबले में भारत के रौनक चौहान और महिला सिंगल सेमीफाइनल में देविका सिहाग हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर ग्रुप ए के अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। पुरुष T20 क्रिकेट में आज बेलफास्ट में भारत का सामना मेजबान आयरलैंड से होना है। ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6 बजे से खेला जाएगा। गोवा के 14 वर्षीय एथनवाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो GM मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ एथेन अनुराग महामल और लियोन मेंडोका के बाद गोवा से तीसरे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमेरिका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहैम और हैरी केन के 1-1 गोल के बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे नंबर पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय ने

भारतीय नागरिकों से सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हुई और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

विश्व दर्पण, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:20 हुए हैं। फिल्म संगीत, ये कार्यक्रम सुनिएगा बस थोड़ी ही देर में।

0: जलवायु परिवर्तन हम क्या कर सकते हैं? यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन लोगों के जीवन के लिए एक बड़ा खतरा है और इससे बचने के लिए तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। सरकारों को उत्सर्जन घटाने और जलवायु के प्रभाव से निपटने के लिए कदम उठाने चाहिए। आम लोगों से लेकर इंडस्ट्रीज तक सबकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। कोयला, तेल और गैस का कम इस्तेमाल बहुत जरूरी है। कई देश अब भी इन पुराने ईंधनों पर निर्भर है, लेकिन वे साफ ऊर्जा अपनाने की पहल कर सकते हैं। निजी क्षेत्र, खासकर ऊर्जा, फैक्ट्री और खेती से जुड़े व्यवसायों की बड़ी जिम्मेदारी है कि वे धरती को बचाने में मदद करें। क्या आप जानते हैं 191 देश पेरिस समझौते का हिस्सा हैं, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जा सके।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
3: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
1: ज्ञान विज्ञान
2: इतिहास के पन्नों से,
1: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
0: मौसम का मिजाज,
1: अपने शहर की खबरें,
2: बातों मुलाकातों के साथ
0: सुरीला मनोरंजन
1: और भी बहुत कुछ।
0: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में
2: दिन के 11:05 से 12 बजे तक
1: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
3: नमस्कार जमशेदपुर।

प्रस्तुति कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।

नाम शबाना। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, श्रेया घोषाल की आवाज़ थी। मनोज मुंतशिर ने इस गीत को लिखा था और संगीतबद्ध किया था रोचक कोहली ने। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और श्रेया घोषाल और अजय गोगावली की आवाज़ों में सिंघम फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

श्रेया घोषाल और अजय गोगावली की आवाज़ों में सिंघम फिल्म का ये गीत आपने सुना। गीत के बोल लिखे थे स्वानंद किरकिरे ने और इसे संगीतबद्ध किया था अजय अतुल ने। श्रोताओं, कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: दादी कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले
1: तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: हेलो डॉक्टर, आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ। हेलो डॉक्टर,
5: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
9: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
8: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
9: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ मेरे मन की बात के लिए, आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
10: सुनो ना।
11: हाँ?
10: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
11: तो रोका किसने है? हाँ?
10: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
11: मुझसे।
10: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
11: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
10: पर उससे मेरा क्या फायदा?
11: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
10: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
11: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001-4242।
10: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।

लेकिन फिल्म का ये पारंपरिक गीत आपने सुना, आवाज लता मंगेशकर दी थी, संगीत हृदयनाथ मंगेशकर ने दिया था। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अगला गीत सुनते हैं हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म का। आवाजें श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की है, गीत के बोल कुमार ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है शारिब तोशी और जवाद अहमद ने।

अब आइए श्रोताओं, बॉडीगार्ड फिल्म का ये गीत सुनते हैं। राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाजें हैं। गीत के बोल शब्बीर अहमद ने लिखे हैं और धुन बनाई है हिमेश रेशमिया ने।

बॉडीगार्ड फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:55 होने को है। आइए शामिल होते हैं दिल्ली के प्रसारण में, जहां से आप 11 बजे सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जनता के साथ मन की बात।

0: कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
5: कोई बोले राम राम।
4: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: बोल बोल के थक गया, क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले
2: ले आ गया नया किड बैग।
3: RBI कहता है
0: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
4: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
5: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और यह कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें।

से कार पूलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूँ कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे, वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है, इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहाँ नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपए के सालाना प्रीमियम, यानी केवल एक साल के 20 रुपए का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपए है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े

आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी

मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है, हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है, और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती, और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूँ। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है, उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगीला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी, फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया, और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है, और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक से अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है।

साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए एआई इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य घड़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है।

वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं, वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। यह हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव

साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे। लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो। वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए

0: संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
2: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई है। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय का जलावतरण किया गया। ये तीनों युद्धपोत डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरी तरह से स्वदेशी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जमीन से हमले के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार ये आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
2: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
2: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। श्री मोदी आज सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को भी संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकमन में राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होंगे। समारोह में भारतीय रक्षा बलों का दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और IIT खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी हैं। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि श्री राव ने देश की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया। रक्षा मंत्री ने उन्हें दूरदर्शी नेता और प्रख्यात राजनेता बताया। किदांबी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। लंदन के लॉर्ड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। उधर बेलफास्ट में पुरुष T20 क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओ, इस समय आप हैं आकाशवाणी जमशेदपुर के साथ। दिन के 12:05 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम शीर्षक गीत।

शीर्षक गीत कार्यक्रम के श्रोताओं को श्वेता का नमस्कार। श्रोताओं, यूं तो सबके जीवन की कोई ना कोई कहानी होती है। किसी की कहानी लंबी होती है तो किसी की छोटी। इसी तरह से किसी के जीवन की कहानी कुछ खास होती है जो दूसरों के जीवन को विशेष रूप से प्रभावित करती है।

प्यार के न जाने कितने मौसम होते हैं, उन्हीं को उकेरती कहानियां प्यार के हर रिश्ते को बुनती है। ये कहानियां हम सबकी हैं, क्योंकि प्यार से कभी कोई अछूता नहीं रह सकता। आखिर प्यार है ही ऐसी भावना कि ये जिसका स्पर्श कर लेती है वो खुद की अपनी एक दुनिया बना लेता है, और जिससे प्यार होता है उसे अपनी दुनिया समझ लेता है।

प्यार जितना देता है उतना ही लेता भी है। प्यार की कहानी को कुछ शब्दों में बांध पाना मुमकिन नहीं है। प्यार हमेशा सच्चा होता है, लेकिन अगर रिश्तों में दरार आने लगे और समय रहते उन्हें भरा न जाए तो रिश्तों को हमेशा हमेशा के लिए सहेजना मुश्किल हो जाता है।

प्यार कभी भी वेटिंग रूम का इंतजार नहीं करता, वो तो अपनी सुगंधित यादें छोड़ देता है। वो मन के हर बंधन को तोड़कर एक सपने सा सच हो जाता है।

शीर्षक गीत कार्यक्रम का आज का सफर पूरा हुआ। आज का शीर्षक था कहानी। आपको बताते चलें, कार्यक्रम में आज आपने जिन फिल्मों के गाने सुने उनके नाम है मासूम, क्रिश, इजाजत और मेरा गांव मेरा देश। गानों के लिए आवाजें दी आरती मुखर्जी, सोनू निगम, श्रेया घोषाल, आशा भोसले और लता मंगेशकर की। इन गानों को लिखा गुलजार, जावेद अख्तर और आनंद बख्शी ने। संगीतबद्ध किया आर डी बर्मन, राजेश रोशन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अब शीर्षक गीत कार्यक्रम से श्वेता को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12:30 होने वाले हैं। प्रस्तुत है महिलाओं पर केंद्रित कार्यक्रम अंगना

मना के सभी श्रोताओं को दोस्त और बहन जयश्री का प्यार भरा नमस्कार जोहार। बहनों, आज अपने छोटे से बच्चे को आपने पोलियो की खुराक दिलवा देना, और अगर नहीं दिलवाई है तो अपने नजदीकी बूथ पर जाकर जरूर दिलवाएं, क्योंकि आज है पल्स पोलियो दिवस। जी हाँ, पल्स पोलियो अभियान आज आयोजित किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के तहत ये एक मेगा पल्स पोलियो अभियान के रूप में आयोजित किया जा रहा है। वैसे तो बहनों, भारत 2014 से ही पोलियो से मुक्त हो चुका है, लेकिन वैश्विक स्तर पर विशेषकर पड़ोसी देशों में इसके सक्रिय मामलों को देखते हुए देश को सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर ये राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाता है। इस अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन यानी 2 बूंद जिंदगी की दी जा रही है। देश के विभिन्न राज्यों जैसे झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड में राज्य सरकारों द्वारा लाखों बच्चों को इस दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया है। अकेले झारखंड में ही 61 लाख से अधिक बच्चों को कवर करने का खाका तैयार किया गया है। चूंकि 28 जून को मुख्य बूथ दिवस रखा गया है, लेकिन प्रशासन ने इसे सफल बनाने के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और स्थानीय सरकारी भवनों में हजारों विशेष बूथ बनाए गए हैं। जो बच्चे यात्रा कर रहे हैं या खानाबदोश या प्रवासी क्षेत्रों में रहते हैं, उनके लिए रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों, हवाई अड्डों और प्रमुख चौराहों पर मोबाइल टीमें तैनात की गई हैं। और बहनों, जो बच्चे 28 जून को किसी कारणवश बूथ पर नहीं पहुंच पाएंगे, उनके लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जैसे ANM, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा 29 और 30 जून को घर घर जाकर टीका लगाने का फॉलोअप अभियान चलाया जाएगा। बहनों, हम आपको बता दें कि हमारे देश में 2 अक्टूबर 1995 को पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जिसके तहत 2 बूंद जिंदगी की का नारा बेहद प्रसिद्ध हुआ था। लगातार प्रयासों के बाद भारत 27 मार्च 2014 को आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है। भले ही हमारा देश पोलियो मुक्त हो चुका हो, लेकिन टीकाकरण का नियमित अभियान इसलिए भी चलाया जाना जरूरी है ताकि देश में इस बीमारी की वापसी ना हो सके। तो हमारे बच्चों को स्वस्थ रखना तो जरूरी है ही, साथ ही हम आपको ये बता दें कि हम जिस भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं वो भौगोलिक क्षेत्र उष्णकटिबंध में पड़ता है, और हम मनाते हैं 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस। इसका उद्देश्य उष्णकटिबंधीय देशों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों जैसे कि जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और गरीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। बहनों, उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है ना, पृथ्वी के सबसे जीवंत, विविधतापूर्ण और गतिशील हिस्सों में से एक है। ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के दोनों ओर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बहनों केवल अत्यधिक गर्मी और घने जंगलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत कई तरह के भौगोलिक और पारिस्थितिक स्वरूप आते हैं। दुनिया के लगभग 80% जैव विविधता इसी क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ की गर्म और नम जलवायु पौधों और जीवों की लाखों प्रजातियों के पनपने के लिए आदर्श है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन जैसे अमेज़न और कांगो के बेसिन, वहाँ साल भर भारी वर्षा होती है और इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। सवाना और घास के मैदान एक निश्चित शुष्क और गीला मौसम क्षेत्र लेकर रहता है, और इसी अक्षांश के कुछ हिस्सों में सहारा और थार जैसे शुष्क मरुस्थल भी आते हैं जहां वर्षा बहुत कम होती है। दुनिया के लगभग 95% मैंग्रोव वन और अधिकांश समुद्री प्रवाल भित्तियां जैसे कि ग्रेट बैरियर रीफ, बहनों, इसी उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में स्थित है जो समुद्री जीवन का आधार है। सांस्कृतिक और भाषाई विविधता भी इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा मिलती है, क्योंकि दुनिया की एक बड़ी आबादी इसी क्षेत्र में निवास करती है। यहाँ दुनिया की सबसे अधिक स्वदेशी संस्कृतियां और भाषाई विविधता पाई जाती है। इसी विविधता का हम सब आइए जश्न मनाते हैं, और इसका संरक्षण करने के लिए हम अपनी तरफ से प्रयास करते हैं। कितना सुंदर लगता है ना, जब पंछियों का कोलाहल, नदियों का संगीत और पत्तों की सरसराहट कानों में गूंजती है, तो वो बेहतरीन प्राकृतिक सुख कहीं और शायद ना मिले। इसी पर याद हो आया मुझे सिर्फ तुमका ये खूबसूरत गीत, समीर का लिखा हुआ है, संगीत से इसे सजाया है नदीम श्रवण ने, और आवाज है उदित नारायण की। आइए सुनते हैं।

0: इस खूबसूरत गीत के बाद मैं बहनों याद दिला दूं कि 30 जून को हम मनाते हैं हूल दिवस। जल, जंगल और जमीन के लिए लड़ी गई ये लड़ाई आज भी हम याद करते हैं, लेकिन इतिहास सिर्फ याद करने की चीज नहीं है बल्कि सीखने की चीज है और जिंदगी में उतारने की चीज है। अब आप ये सब सोच रही होंगी, ये सवाल आपके दिल में भी आ रहा होगा कि आज हूल दिवस की क्या जरूरत है, हूल दिवस आज क्यों जरूरी है, हूल आज भी उतना ही क्यों आवश्यक है। तो आइए हम आपको सुनवाते हैं संजय सिंह सरदार से ये वार्ता, जो कि राज्य कर पदाधिकारी हैं, आज के परिवेश में हूल दिवस की प्रासंगिकता। आइए सुनते हैं उनसे ये वार्ता।
1: वक्त की लकीरों पर कुछ तारीखें ऐसी खिंच जाती है जो सदियों तक समय के पन्नों पर अमर हो जाती है। 30 जून एक ऐसा दिन है। जोहार, नमस्कार, मैं संजय सिंह सरदार और इस खास दिन में हम आपको ले चल रहे हैं इतिहास के उस पन्नों पर जिसने हमारी और आपकी दुनिया बदल कर रख दी। बात 30 जून 1855 की है, जब 1857 के विद्रोह के ठीक 2 साल पहले हुआ था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संथाल विद्रोह के बारे में। इतिहास के पन्नों में 30 जून 1855 का दिन स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है, जब झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाड़े गांव में संथाल विद्रोह, जिसे हुल विद्रोह भी कहा जाता है, का बिगुल फूंका गया था। संथाल का अर्थ है विद्रोह यानी क्रांति, यानी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। संथाल कौन थे? संथाल भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यह मूल रूप से बीरभूम और मानभूम, वर्तमान पश्चिम बंगाल से है। 18वीं सदी के अंत में पड़े अकाल और ब्रिटिश नीतियों के कारण दामिनी को क्षेत्र वर्तमान झारखंड के राजमहल के आसपास क्षेत्र में आकर बसने लगे। संथाल अपने पारंपरिक प्रशासनिक व्यवस्था रीति रिवाज के तहत दामिनी को क्षेत्र में जीवन यापन करते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार उनसे राजस्व कर वसूलने के लिए तरह तरह की नीति नियम समय समय पर थोपते गए। 1793 के स्थायी बंदोबस्त के कारण जमींदारों ने संथालों की उपजाऊ जमीनों को हड़प लिया, साथ ही साहूकारों, महाजनों द्वारा शोषण किया गया और ब्याज की दरें कई गुना बढ़ा दिए और ना चुकाने पर बेगारी कराया गया। बाहरी लोगों द्वारा आदिवासी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, साथ ही साथ पुलिस, न्यायालय और सरकारी अधिकारियों द्वारा एक ऐसी संरचना विकसित की थी जो आदिवासियों के जीवन को प्रतिदिन परेशान करता था। विद्रोह के तत्कालीन कारणों में भागलपुर से वर्धमान के बीच रेल लाइन बिछाने के बीच संथालों से बेगारी करवाना था। हर तरफ से तंग आकर संथाल आदिवासियों ने 30 जून 1855 को साहेबगंज जिला के भोगनाड़े गांव में कई हजार संथाल आदिवासी एकत्रित होते हैं और शपथ लेते हैं शोषण, अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए, साहूकार, महाजन और अंग्रेजों को अपना देश से मार भगाने के लिए। और वहीं से हुल क्रांति की शुरुआत होती है, जिसका नेतृत्व करता है सिद्धू कानू, चांद भैरव और उनकी बहनें फूलो झानो। और नारा दिया जाता है, अपना देश अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, करो या मरो अंग्रेजो हमारी माटी छोड़ो। फूलो झानो द्वारा गुप्त रूप से गांव-गांव तक सिद्धू कानू के संदेश को पहुंचाने के लिए साल की टहनियों का उपयोग करते थे, दुश्मनों के कैंप में घुसकर अंग्रेजों को मौत के घाट उतार देते थे। हुल की क्रांति संथाल परगना से होते हुए हजारीबाग, बीरभूम, छोटनागपुर तक फैल गया। 7 जुलाई 1855 को पीरपेंती के युद्ध में मेजर बरो को हरा देता है और संथाल हुल हुल करते कलकत्ता की ओर कूच करने लगते हैं। रास्ते में जितने सारे सरकारी कार्यालय दस्तावेज मिलते हैं सबको जला देते हैं और जमींदारों, महाजनों, पुलिस स्टेशनों पर हमला बोलते हैं और उनकी हत्याएं करते हैं। विद्रोह को कुचलने के लिए ब्रिटिश अधिक संख्या में सेना भेजती है और दामिनी को क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा देता है। साथ ही साथ विद्रोही नेताओं को पकड़ने के लिए कई इनाम की घोषणा करते हैं। चांद भैरव को गोली लगने से शहीद हो जाते हैं और अंत में सिद्धू कानू को फांसी दे देते हैं और शहीद हो जाते हैं। संथाल विद्रोह में कई हजार आदिवासियों ने भाग लिया और हजारों की संख्या में विद्रोही शहीद हुए। विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा संथाल परगना को नॉन रेगुलेशन जिला बनाया गया, साथ ही 1856 में यूल नियम की व्यवस्था की गई, साथ ही 1872 में संथाल परगना बंदोबस्त नियम लागू किया जो बाद में एसपीटी एक्ट 1949 बना, जिससे आदिवासियों की जमीनें और अधिकारों की रक्षा हुई। आज के परिवेश में हुल दिवस की

0: प्रासंगिकताएं कई मायनों में बेहद अहम हो जाती है। पहला, जल, जंगल, जमीन और पर्यावरण संरक्षण। आज पूरी दुनिया पर्यावरण संकट और जलवायु परिवर्तन से जूझ रही है। हुल दिवस हमें अपनी प्रकृति और धरती को रक्षा करना सिखाती है। सतत विकास और पर्यावरण के प्रति सचेत रहना ही आज का आधुनिक हुल है। दूसरा, अपनी संस्कृति और पहचान पर गर्व करना। वैश्वीकरण के इस दौर में हम अपनी जड़ें और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हुल दिवस हमें अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान पर गर्व करना सिखाती है। यही से समाज आगे बढ़ सकता है। तीसरा, फूलों झाड़ों का संदेश, असली महिला सशक्तिकरण। आज के युवा पीढ़ी, खासकर युवतियों के लिए यह सीख है कि नेतृत्व और वीरता किसी लिंग की मोहताज नहीं होती है। महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व करने में सक्षम हैं। चौथा, एकजुटता और सामूहिक प्रयास की शक्ति। ब्रिटिश सेना के पास आधुनिक हथियार थे और संथालों के पास सिर्फ तीरधनुष और कुल्हाड़ी और तो था एक अटूट साहस। हुल दिवस हमें कभी हार न मानने की प्रेरणा देते हैं और कम संसाधन होते हुए भी दुनिया को जीतने की हौसला देता है। पांचवा, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना। आज जब हमारे आसपास कहीं भी अन्याय दिखता है तो हमें चुप नहीं बैठना चाहिए, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। उसके लिए हम लोग सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं, साथ ही एक जागरूक नागरिक बनने की प्रेरणा ले सकते हैं। आज हमें हाथों में तीर धनुष या हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, आज देश को इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन यानी बौद्धिक हुल की जरूरत है। जब हम अशिक्षा के खिलाफ खड़े होते हैं, जब हम गरीबी भुखमरी को मिटाने की बात करते हैं, जब हम अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान पर गर्व करते हैं तो हुल कर रहे होते हैं। जब हम सोशल मीडिया पर नफरत को नकार करके भाईचारे की बात करते हैं तो हुल कर रहे होते हैं। तो आइए इस हुल दिवस पर हम सब यह संकल्प लें कि अपने अंदर के हुल को कभी मरने नहीं देंगे, अपने माटी के शहीदों को नमन करें और देश की तरक्की में अपना योगदान दें। यह हमारे संथाल विद्रोह के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हुल जोहार, जोहार झारखंड, जय हिंद।
1: बहनों, अभी आप सुन रही थी आज के परिवेश में हुल दिवस की प्रासंगिकता विषय पर वार्ता। वार्ताकार थे राज्य कर पदाधिकारी संजय सिंह सरदार। और अब हम बात करते हैं हमारे आसपास के वातावरण की, पर्यावरण की। बहनों, पर्यावरण वातावरण हमारे लिए बेहद जरूरी है और हमारा पर्यावरण वातावरण हम सब से मिलकर बना है, जिसमें कि वन एक बहुत जरूरी अवयव है। वन है तभी हमारा पर्यावरण संतुलित हो पाता है, हर जीव अपने अस्तित्व की रक्षा कर सकता है। बहनों, पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व के सबसे बुनियादी शर्त है वन। वन हमारे ग्रह के फेफड़े हैं जो पूरे इकोसिस्टम को जीवित और संतुलित रखते हैं। अब आप देखिए ना बहनों, वन प्रकाश संश्लेषण के जरिए हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और जीवनदायिनी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वैश्विक तापमान को नियंत्रित रखने का ये सबसे प्रभावी प्राकृतिक माध्यम है। पेड़ अपनी जड़ों के माध्यम से भूमिगत जल को बनाए रखते हैं और वाष्पोत्सर्जन द्वारा बादलों के निर्माण में मदद करते हैं, जिससे समय पर वर्षा होती है। वनों की कमी सीधे तौर पर सूखे और अकाल को आमंत्रण देती है। बहनों, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से जकड़ कर रखती है, जिससे उपजाऊ मिट्टी का कटाव नहीं होता। भारी बारिश के समय वन पानी के तेज बहाव को रोककर बाढ़ की विभीषिका को कम करते हैं। जैसा कि हमने उष्णकटिबंधीय वनों के बारे में देखा है, हमने उष्णकटिबंध के बारे में बात की। वन दुनिया के अधिकांश वन्य जीव और वनस्पति प्रजातियों का घर है। एक भी प्रजाति के नष्ट होने से पूरी खाद्य श्रृंखला डगमगा जाती है। अगर वन इसी तरह कटते रहे, घटते रहे, तो पर्यावरण का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा, और जिसके लक्षण अब दिखने भी लगे हैं बहनों। असमय बारिश, अत्यधिक गर्मी और सर्दियों का चक्र बिगड़ना, ये सब हमें ये बतला रहा है कि मौसम चक्र में किस तरह से बदलाव आ रहा है। उपजाऊ भूमि का धीरे धीरे बंजर रेगिस्तान में बदल जाना और जंगलों के कटने से वन्य जीव भोजन और आवास की तलाश में रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं, जिससे मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष हो रहा है और हम सब धीरे धीरे अलग ही तरह के संकट का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण को वापस पटरी पर लाने के लिए केवल वनों को बचाना ही काफी नहीं है, बल्कि नए वनों का विकास भी जरूरी है। खाली पड़ी भूमि

और पहाड़ी ढलानों पर बड़े पैमाने पर स्थानीय प्रजातियों के पौधे हम लगा सकते हैं। वनों के संरक्षण और स्थानीय और आदिवासी समुदायों को शामिल करके हम सामुदायिक भागीदारी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वे जंगलों के सबसे सच्चे संरक्षक होते हैं। सतत विकास को जारी रखते हुए बुनियादी ढांचे के विकास, जैसे कि सड़क है, उद्योग है, इन सब के विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की नीतियों को कड़ाई से हम लागू कर सकते हैं। याद रखिए बहनों, वन है तो जल है तो अन्न है, और अन्न है तो हम हैं। पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए हर नागरिक को पेड़ लगाने और उसे बचाने का संकल्प लेना होगा। पर्यावरण संतुलन के लिए वन बेहद जरूरी है, ये बात हर किसी को समझना होगा, क्योंकि इसके बिना हम ना वन को बचा सकते हैं, ना खुद को बचा सकते हैं, और ना हमारे कल को बचा सकते हैं।

0: इस खूबसूरत से गीत के बाद आप सबका भी मन जो है ना वो हरियाली की तरफ जरूर झुक चुका होगा और आपके भी ख्वाबों ख्यालों में वो हरियाली आ रही होगी। और जब हल्की बारिश होती है तो बेशक पूरा धुला धुला सा पेड़ पौधे और उनके पत्ते बेहद खूबसूरत लगते हैं, लेकिन अभी जिस तरह का मौसम चल रहा है बहनों, उसमें कभी तो अत्यधिक गर्मी पड़ जाती है यानी उमस होती है, और अचानक से बरसात, यानी एक साथ दोनों मौसम का सामना। और ये बदलता मौसम अपने साथ वायरल इन्फेक्शन और त्वचा की समस्याएं और पाचन संबंधी बीमारियां लेकर आता है, तो इस दोहरे मौसम में खुद को सुरक्षित रखना भी बेहद जरूरी है। तो इसलिए बहनों अपने खान पान पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दे दीजिए। इस मौसम में पानी उबला हुआ या फिर फिल्टर किया हुआ पीजिए, ताकि जल जनित जो बीमारियां हैं जैसे कि पीलिया, डायरिया और टाइफाइड, ये सब से हम दूर रहें। और हाँ, उमस वाली गर्मी में पसीना तो बहुत अधिक निकलता है जिससे शरीर में नमक की कमी हो जाती है, तो इससे बचने के लिए बहनों पानी के साथ साथ नींबू पानी, ORS या नारियल पानी का सेवन करें। और इस मौसम में बैक्टीरिया भी बहुत तेजी से पनपते हैं, इसलिए सड़क किनारे मिलने वाले कटे हुए फल, जूस, चाट पकौड़ी और खुले में रखे भोजन से पूरी तरह दूरी बना के रखिएगा। हमेशा ताजा और गर्म भोजन ही घर पर खाएं, ज्यादा बेहतर है। और इस मौसम में गर्मी से बचने के लिए सूती और ढीले कपड़े पहनिएगा बहनों, जो पसीने को सोख सके। साथ ही अचानक होने वाली बारिश से बचने के लिए बाहर निकलते समय हमेशा अपने बैग में एक छतरी या फिर रेनकोट साथ रखिएगा। अगर आप बारिश में भीग जाती हैं तो जितनी जल्दी हो सके साफ पानी और साबुन से नहाइए और शरीर को पूरी तरह सुखाकर साफ कपड़े पहनिए। फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए एंटी फंगल पाउडर का उपयोग किया जा सकता है। गंदे पानी में चलने से पैरों में इन्फेक्शन हो सकता है बहनों, इसलिए वाटरप्रूफ और आरामदायक फुटवेयर पहने। घर लौटकर पैरों को अच्छी तरह से धोकर सुखाइएगा। और साथ ही बरसात के कारण जगह जगह पर पानी जमा हो जाता है, जो डेंगू और मलेरिया के मच्छरों का प्रजनन स्थल बनता है, इसलिए कूलर, गमलों, टायर या छतों पर पानी जमा मत होने दीजिए और सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग कीजिए। और फिलहाल वक्त का ये इशारा है कि हमें आपसे लेनी होगी विदा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। इसी दुआ और शुभकामनाओं के साथ अपनी दोस्त और बहन जयश्री को दीजिए विदा। पुनः मिलने के वादे के साथ आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जोहार।
1: अंगना, महिलाओं का कार्यक्रम अपना अंगना।

आप सुन रहे थे महिलाओं पर केंद्रित कार्यक्रम अंगना। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 1 बजने को है अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे बारी बारी से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 1:10 से सुनेगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 ये

0: विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण किया गया। ये तीनों युद्धपोत डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरी तरह से स्वदेशी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जमीन से हमले के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
0: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था, कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। दोनों नेता भारत सेशेल्स संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इससे पहले स्टेट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और IIT खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। किदांबी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। लंदन के लॉर्ड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। इधर बेलफास्ट में पुरुष T20 क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi has highlighted that India achieved major success in the aviation sector in June with the Made in India C-295 aircraft completing its maiden flight. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani today, the Prime Minister shared that 40 such aircraft are being manufactured in India. Mr. Modi exuded pride that India achieved success linked to the country's security.

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। आकाशवाणी से मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी रक्षा और विमानन क्षेत्र की उपलब्धियों का किया उल्लेख, कहा रक्षा विमानन और युग

0: कुमार सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस समय देश में ऐसे 40 और विमान बनाए जा रहे हैं।
1: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई है। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में योग दिवस में करोड़ों लोगों ने भागीदारी की है।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में बढ़ते अवैध खनन को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। चाईबासा में उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अवैध खनन में संलिप्त लोगों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि बालू घाटों की नीलामी समय पर नहीं होने से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, जबकि अवैध खनन को बढ़ावा मिल रहा है।
2: राज्य में जिनकी सरकार, यानी जितनी भी प्रकार के खनिज, वो सब खनिजों के इसी प्रकार से चोरी हो रहा है। इन 6 वर्षों में 5-6 तो यहाँ आयरन ओर की खदानें जिनको ऑक्शन करना था, नहीं किया। शुरू में भारत सरकार को पत्र लिखा कि हम ही को खोदने की इजाजत दीजिए। इजाजत उनको नहीं मिली तो इलीगल तरीके से सब खुदवाई कर रहा है।
0: पूर्वी सिंहभूम के पोटका प्रखंड में ब्रेन मलेरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अब तक 3 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 16 नए संक्रमित मिले हैं। गंभीर मरीजों को जमशेदपुर के अस्पतालों में रेफर किया गया है। स्वास्थ्य विभाग प्रभावित गांवों में जांच, उपचार और जागरूकता अभियान चला रहा है। लोगों से तेज बुखार या अन्य लक्षण दिखने पर तुरंत सरकारी अस्पताल में जांच कराने की अपील की गई है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर रांची नगर निगम में स्वनिधि महोत्सव आयोजित किया गया। इस अवसर पर बताया गया कि अब तक 14,444 स्ट्रीट वेंडर्स को लगभग 29,84,00,000 रुपए का ऋण दिया जा चुका है। पात्र लाभार्थियों को सांकेतिक ऋण स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। महापौर रोशनी खलखो ने योजना को छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण की घोषणा की है। मेधा सूची में शामिल 1,941 अभ्यर्थियों की चिकित्सकीय जांच 1 से 14 जुलाई तक रांची के सदर अस्पताल में होगी। पहले दिन 150 अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। मेडिकल जांच के बाद दस्तावेजों का सत्यापन होगा, जिसके आधार पर आयोग अंतिम परीक्षा परिणाम जारी करेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्सेंडल AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्सेंडल @AIR_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची सहित पूरे झारखंड में आज से पल्स पोलियो अभियान शुरू हो गया। यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इसके तहत जिले के 5,05,524 बच्चों को पोलियो रोधी वैक्सीन की 2 बूंद पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान का शुभारंभ महापौर रोशनी खलखो, विधायक CP सिंह, सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार और NHM के अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ। विधायक सीपी सिंह ने कहा कि पोलियो मुक्त भारत की उपलब्धि बनाए रखने के लिए

0: हर बच्चे तक खुराक पहुंचना जरूरी है।
1: पोलियो दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई थी ताकि एक भी बच्चा इससे वंचित न रह जाए, और सदर अस्पताल के माध्यम से बूथों पर यहाँ के कर्मचारी पोलियो की खुराक देने का काम कर। लोगों में जागरूकता आनी चाहिए कि अपने जो नवजात बच्चे हैं उन सभी बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य दिलाए, कोई भी उससे वंचित न रह जाए।
0: वहीं मेयर रोशनी खलखो ने बताया कि नगर निगम के सभी वार्डों में आरोग्य केंद्रों और हेल्थ पॉइंट के माध्यम से बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जा रही है।
2: निश्चित इसमें नगर निगम भी भागीदारी निभाएगी और एक एक बूथ पर, एक एक आरोग्य मंदिर पर, एक एक दरवाजे पर पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाएगी, बच्चों को खोज खोज करके पिलाए जाएंगे। मैं सारे बच्चों के लिए उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर।
0: देवघर में उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने नए सदर अस्पताल में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत की। जिले में 1488 बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जा रही है। सरायकेला खरसावां जिले में भी 0 से 5 वर्ष तक के 17,765 बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाने के लक्ष्य के साथ आज पल्स पोलियो अभियान शुरू हुआ। सदर अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर सरयू प्रसाद सिंह ने बच्चों को दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। दुमका जिले के मसलिया प्रखंड में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से दुमका पलाश टोटो योजना की शुरुआत की गई। विधायक बसंत सोरेन ने योजना का लोकार्पण कर सखी मंडल के 21 महिलाओं को ई रिक्शा की चाबी सौंपी। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की इस योजना के तहत महिलाओं को आसान ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि वे स्वरोजगार से अपनी आय बढ़ा सकें। हजारीबाग के उपायुक्त हेमंत सती ने कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर बंद करना समाधान नहीं है, बल्कि सभी संस्थानों में अग्नि सुरक्षा सहित आवश्यक सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित किए जाने चाहिए।
3: सबसे पहले हमारे ये आवश्यक है हम लोगों के लिए जानना कि लोड का असेसमेंट सही तरीके से, इसे कि कृपया अपना ऑडिट जरूर कराएं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोचिंग संस्थानों के ऊपर कार्रवाई कर दें हम लोग और कोचिंग संस्थाओं को बंद करा दें। सॉल्यूशन ये है कि जितने भी कोचिंग संचालक हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया आप अपना लोड असेसमेंट कराइए, अपना फायर सेफ्टी का ऑडिट कराइए।
0: राजधानी रांची में सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,34,900 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,28,000 रुपए प्रति किलो है। थाईलैंड में 27 से 29 जून तक आयोजित हुई अंडर 15 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ग्रीको रोमन टीम ने 150 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि उज्बेकिस्तान 171 अंकों के साथ पहले और कजाकिस्तान 167 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। रांची के अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रशिक्षक बबलू कुमार ने भारतीय अंडर 15 टीम के कोच के तौर पर तृतीय स्थान विजेता की ट्रॉफी ग्रहण की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आकाशवाणी से मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी रक्षा और विमानन क्षेत्र की उपलब्धियों का किया उल्लेख, कहा रक्षा विमानन और योग में बढ़ी भारत की वैश्विक पहचान। बालूघाटों की नीलामी नहीं होने पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार को घेरा, कहा सरकार को हो रहा भारी राजस्व नुकसान। पोटका में ब्रेन मलेरिया से 3 बच्चों की मौत, 16 नए संक्रमित मिले, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। जेएसएससी ने जारी किया उत्पाद सिपाही भर्ती का मेडिकल शेड्यूल, 1 जुलाई से होगी 1,941 अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच। और थाईलैंड में आयोजित अंडर 15 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारत तीसरे स्थान पर, रांची के कोच बबलू कुमार सम्मानित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
1: 870-001-4242।
2: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
3: ज्ञान विज्ञान
4: इतिहास के पन्नों से,
3: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
2: मौसम का मिजाज,
3: अपने शहर की खबरें,
4: बातों मुलाकातों के साथ
2: सुरीला मनोरंजन
3: और भी बहुत कुछ।
2: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
4: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
2: नमस्कार जमशेदपुर।

डेढ़ बीघा जमीन, इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। आवाजें थीं अनुराग साइकिया और राघव चैतन्य की। गाने की बोल लिखे रश्मि विराग ने और धुन बनाई अनुराग साइकिया ने। और अब आइए सुनते हैं लापता लेडीज फिल्म का गाना। आवाज़ है श्रेया घोषाल की, गीतकार है स्वानंद किरकिरे और संगीतकार राम संपत।

लापता लेडीज़ इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। आवाज़ थी श्रेया घोषाल की, गाने के बोल लिखे स्वानंद किरकिरे ने और धुन बनाई राम संपत ने। श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, समय हो चला है अंतराल का। बने रहिए आकाशवाणी जमशेदपुर के साथ।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
1: हेलो डॉक्टर,
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-296-0445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-296-0445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
1: हेलो डॉक्टर।

0: अंतराल पूरा हो चुका है, अब आइए सुनते हैं पुष्पा 2 फिल्म का गाना। आवाज है श्रेया घोषाल की।
1: पत्थर है वो मुझे रोक टोक।

श्रेया घोषाल की आवाज़ में आप सुन रहे थे पुष्पा 2 फिल्म का गाना। गाने के बोल लिखे रकीब आलम ने और धुन बनाई देवी श्री प्रसाद ने। और अब आइए सुनते हैं रक्षाबंधन फिल्म का गाना। आवाजें हैं हिमेश रेशमिया और निहाल तौरो की। गीतकार

0: निहाल तौरों की आवाज़ में आप सुन रहे थे रक्षाबंधन फिल्म का गाना। गाने के बोल के इरशाद कामिल ने और धुन बनाई हिमेश रेशमिया ने। श्रोताओं, कार्यक्रम में लेते हैं छोटा सा अंतराल।
1: शहर और जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। दुनिया के आधे से ज्यादा लोग अब शहरों में रहते हैं और ये शहर दुनिया के 3/4 ग्रीन हाउस गैस प्रदूषण के जिम्मेदार हैं। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर हो और आबादी घनी हो, वहां बुरे मौसम, हवा में गंदापन और बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा होता है। लेकिन शहर समस्या का हल भी बन सकते हैं, जैसे बेहतर सार्वजनिक परिवहन, कम गाड़ियां और अपने शहर में ही खाद्य उगाना। यह सब प्रदूषण को घटाता है और जीवन को बेहतर बनाता है। सतत योजना बनाना अब कोई विकल्प नहीं रहा, बल्कि यह एक आवश्यकता बन गया है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। आज लगभग 55% लोग पृथ्वी पर शहरों में रहते हैं और यह संख्या तेजी से बढ़ रही है।

तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। आवाजें थीं वरुण जैन, राघव चैतन्य और सचिन जिगर की। गाने के बोल लिखे इंद्रनील ने और तर्ज बनाई सचिन जिगर ने। और अब आइए सुनते हैं वो लड़की याद आती है, इस फिल्म का गाना। आवाज है आलोक कुमार की, गीत और संगीत है अशोक कुमार दीप का।

वो लड़की याद आती है, इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। आवाज़ थी आलोक कुमार की, गीत और संगीत था अशोक कुमार दीप का। और इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर दोपहर के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और फिर दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: FA match in London today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that India achieved major success in the aviation sector in June with the Made in India C-295 aircraft completing its maiden flight. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, the Prime Minister shared that 40 such aircraft are being manufactured in India.
1: जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई. C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं. इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है. आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है.
0: Mr. Modi exuded pride that India has achieved success linked to the country's security and self-reliance this month. He attended an event in Kolkata recently where INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agrav were inducted into the Indian Navy's fleet. Mr. Modi noted that India is becoming increasingly secure and self-reliant from the seas to the skies.
1: Kolkata mein INS Dunagiri, INS Sanshodhak aur INS Agrav ko Bhartiya नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया. इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है. इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है. इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है.
0: The Prime Minister also spoke about International Yoga Day, which saw the entire world join hands with India's efforts. He mentioned the World Yogasan Championship held in Ahmedabad, where India won a total of 114 medals in this event, including 102 gold. Prime Minister Modi stated that the power of public participation in nation building is a tremendous asset for India. He said this public participation was seen again after he urged countrymen on a few points in view of the prevailing warlike situation in West Asia.
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें. लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें. लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी. किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था. मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं.
0: Mr. Modi also cited the example of the Petkar family in Nandher, Maharashtra, who arranged accident insurance for approximately 3,500 villagers. Each individual was provided with an insurance cover of 1 lakh rupees. The Prime Minister shared that the government is extending this protective shield to crores of families across the country.
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है. उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है. ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये का बीमा कवर देती है. इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है.
0: In this episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Modi also touched upon the subject of superstition. He noted that superstition has been deeply ingrained in human society for millennia. Mr. Modi shared how the rare Hargila bird found in Assam was considered inauspicious in certain parts of the state. The Prime Minister stated that it was during that time that biologist Purnima Devi Barman resolved to change the misconceptions deeply rooted in people's minds.
1: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है. ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था. फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ. हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई. आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है. इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे.

0: मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
0: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
1: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार ये आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
0: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की जिसने लगभग 3500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
0: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
0: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ कर के रहे।
1: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
0: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे। नागालैंड के 2 ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने

0: शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
1: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
0: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
1: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
0: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है, वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका ये प्रयास बहुत प्रेरक है।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशेल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
0: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशल के संबंधों को सींचा है।
1: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशेल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किको पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का

0: ने किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
0: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे टी20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। 2 मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। और लंदन में महिला टी20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे शकील आजमी का लिखा हुआ गाना। आवाजें थी हिमेश रेशमिया और राज बर्मन की। फिल्म का नाम था मिडिल क्लास लव।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे लाल सिंह चड्ढा फिल्म का गाना। गाने के बोल लिखे अमिताभ भट्टाचार्य ने और धुन बनाई प्रीतम ने।

0: आदित्य रिखारी की आवाज में आप सुन रहे थे तिनका फिल्म का गाना। इस गाने को संगीत से सजाया आदित्य रिखारी ने।
1: मेरे साजना वे डोला मेरे।

भूल भुलैया 3 फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थी आदित्य रिखारी और तुलसी कुमार की। गाने के बोल लिखे आदित्य रिखारी ने और धुन बनाई लीजो जॉर्ज, डीजे चेतस और आदित्य रिखारी ने। और इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 MHz पर। दिन के 2:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से रिले प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस समय देश में ऐसे 40 और विमान बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में श्री मोदी ने कहा कि इस स्कीम के तहत दुखद मृत्यु की स्थिति में निकटतम परिजन को 2,00,000 रुपए तक का बीमा दिया जाता है और इसके लिए सालाना सिर्फ 436 रुपए का प्रीमियम देना होता है। अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग इस स्कीम से जुड़ चुके हैं और लगभग 11,00,000 परिवारों को लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है। श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे इन स्कीमों के बारे में अपने परिवारों के साथ चर्चा करें।
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
0: जामताड़ा जिले में आज प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को पोलिंग बूथों, अपने अपने घर में टीवी और मोबाइल ऐप पर लोगों ने सुना और सराहना की। भाजपा के जिला महामंत्री कमलेश मंडल ने कहा कि प्रधानमंत्री मन की बात के माध्यम से देशवासियों के लिए प्रेरक और उत्साहवर्धक जानकारियां देते हैं। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल के सांसद सेवा कार्यालय सभागार में मांडू विधानसभा क्षेत्र के विस्थापित आदिवासी गांवों के प्रतिनिधियों ने संवाद के दौरान अपनी समस्याएं रखीं। इस दौरान सांसद ने कहा कि जल्द ही वे खुद टाटा और सीसीएल प्रबंधन का प्रभावित ग्रामीणों के बीच वार्ता कराएंगे ताकि विस्थापन और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक एवं ठोस प्रयास किए जा सकें। बैठक के उपरांत सभी लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात का सामूहिक रूप से श्रवण किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के तहत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के सदर अस्पताल से महापौर रोशनी खलको ने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक सीपी सिंह, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा, सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार सहित कई चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी और अधिकारी उपस्थित रहे। इस वर्ष झारखंड में लगभग 61 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। झारखंड राज्य युवा आयोग द्वारा बोकारो स्टील सिटी में साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें 250 से ज्यादा युवाओं ने भाग लिया। 25 किलोमीटर के साइकिल रेस में राजगंज धनबाद के रोहित कुमार रवानी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। युवा आयोग के अध्यक्ष कुमार गौरव ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य एड्स बीमारी के प्रति जागरूकता और हरित राज्य की परिकल्पना को बढ़ाना है।
1: वो हमारी बचपन की छोटी छोटी खुशियां थी, हमारे पिता का आशीर्वाद था, हमारी माता की सीख थी, उससे हम दूर होते गए। तो एक हमारी पहल है कि लोग साइकिल चलाएं, साइकिल को अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल करें। साथ ही साथ ये जो महंगाई की मार झेल रहे हैं हम, और जो डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड होते जा रहा है हिंदुस्तान, उससे हम बचे।
0: देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से 2 दुकानों में भीषण आग लग गई। इस घटना में करीब 30 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। दमकल कर्मियों और स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए रांची, धनबाद समेत राज्य के 20 जिलों में आंधी, तेज हवा और गरज के साथ बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 4 जुलाई तक बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं। प्रस्तुत है रोजगार समाचार। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं से प्रोबेशनरी ऑफिसर के पद पर आवेदन मांगे हैं। कुल पद हैं 1500, अनारक्षित के लिए 583 पद रिक्त हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 390, अनुसूचित जाति के लिए 234 और अनुसूचित जनजाति के लिए 144, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 144 पद रिक्त हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक या समकक्ष डिग्री प्राप्त करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। स्नातक अंतिम वर्ष के छात्र भी आवेदन के पात्र हैं, बशर्ते साक्षात्कार के समय उन्हें 30 सितंबर 2026 या उससे पहले स्नातक परीक्षा पास करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, इंजीनियरिंग या मेडिकल बैकग्राउंड के उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा है

21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यानी अभ्यर्थी का जन्म 2 अप्रैल 1996 से पहले और 1 अप्रैल 2005 के बाद न हुआ हो। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु में नियम के अनुसार छूट दी जाएगी। उम्मीदवारों का चयन 3 चरणों के माध्यम से किया जाएगा। पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा का होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ ऑनलाइन परीक्षा होगी। दूसरा चरण मुख्य परीक्षा का होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ परीक्षा के साथ एक वर्णात्मक टेस्ट भी शामिल होगा। तीसरे चरण के अंतर्गत साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और व्यक्तिगत साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को 48,480 रुपये प्रतिमाह मूल वेतन और अन्य भत्ते देय होंगे। आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 750 रुपये अदा करने होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना है। अधिक विवरण के लिए आप ऑनलाइन देख सकते हैं। ऑनलाइन का पता है sbi.bank.in। आवेदन के लिए अंतिम तिथि है 8 जुलाई 2026।

BEML लिमिटेड ने नॉन एग्जीक्यूटिव के 362 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों को अनुबंध के आधार पर भरा जाएगा। संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 362 पद रिक्त है। आयु सीमा है, अधिकतम आयु 29 वर्ष तय है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में नियम के अनुसार छूट प्रदान की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को 16,900 रुपये प्रतिमाह बेसिक वेतन व अन्य भत्ते दिए जाएंगे। कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर BMEL की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा। इसके लिए अंतिम तिथि है 10 जुलाई 2026। ऑनलाइन का पता है bemi.registrationform.in। आकाशवाणी जमशेदपुर से रोजगार समाचार संपन्न हुआ।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है सुगम संगीत कार्यक्रम। में ये सुनते हैं सुमना रॉय विश्वास की आवाज में गजल।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है झारखंड के लोकगीत कार्यक्रम में। ये सुनते हैं खड़िया में गीत। कलाकार हैं बुधराम खड़िया।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में। आइए सबसे पहले सुनते हैं विदुषी गिरिजा देवी का पीलू में ठुमरी।

आप सुन रहे थे पहाड़ी में ठुमरी, कलाकार थे पंडित जगदीश प्रसाद। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है लोकगीत कार्यक्रम। में ये सुनते हैं अंगिका में गीत, कलाकार हैं विजया भारती झा।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 4 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से रिले समाचार मुख्यांश।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा है कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दिल्ली स्थित आवास पर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम रेडियो कार्यक्रम का श्रवण किया। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के मन की बात रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से समस्त देशवासियों से सीधा संवाद उनके जन जन के प्रति समर्पण और संवेदनशील नेतृत्व को दर्शाता है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज चायबासा के सदर पश्चिम मंडल टेकरा हातू ग्राम के बूथ संख्या 42 में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का सामूहिक रूप से श्रवण किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व मंत्री बड़कुवर गगरई समेत कार्यकर्ता और ग्रामीण उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा है कि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पलामू के मेदिनीनगर स्थित परिसदन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि मामले की जाँच के लिए विशेष जाँच दल का गठन किया गया है। झारखण्ड राज्य युवा आयोग द्वारा बोकारो स्टील सिटी में साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें 250 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। 25 किलोमीटर के साइकिल रेस में राजगंज धनबाद के रोहित कुमार रवानी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: अच्छा बच्चों, सब लोग आ गए हैं ना?
1: हाँ, आ गए हैं।
0: आप किस स्कूल में पढ़ते?
1: मारुति संगीत पाठशाला।
0: मारुति संगीत पाठशाला के बच्चे हैं आप लोग?
1: हाँ।
0: तो आज हम एक नया गाना सिखाएंगे।
1: हाँ?
0: किसने लिखा है मालूम है? दोड्ड रंगे गौड़ा। किसने लिखा है ये गाना?
1: दोड्ड रंगे गौड़ा।
0: तो आप गाना

0: सीखने के लिए तैयार हैं?
1: हाँ तैयार है।
0: इस गाने का शीर्षक है कडल हक्की गळु। क्या है?
1: कडल हक्की गळु।
0: तो पहले क्या करना, इस गाने को लिख लेना है ना?
1: हाँ।
0: तो बाद में हम गा सकते हैं, नहीं तो नहीं गा सकते हैं, है ना?
1: हाँ, हाँ।
0: तो पहले क्या करना, पेन पेंसिल पेपर सब उठा के अपने आगे रख लेना है।
1: हाँ।
0: रख लिया है?
1: हाँ।
0: अच्छा तो मैं डिक्टेट करती हूँ, आप हाँ। सब लिख लीजिए।
1: हाँ?
0: हाडु तिहवु हारु तिहवु
1: हारु तिहवु हारु तिहवु
0: कडल करेय खग कुला
1: कडल करेय खग कुला
0: यनी तो मुगिला
1: यनी तो मुगिला
0: उद्द अगला
1: उद्द अगला
0: जी की
1: दनी तू
0: बांदड़ा
1: बांदड़ा।
0: अच्छा तो एक पहला स्टैंजा है।
1: हाँ?
0: हाँ। आगे का स्टैंजा है बान लोक नगुआ नाका
1: बान लोक नगुआ नाका
0: हारो हक्की पालीगे
1: हारो हक्की पालीगे
0: रेक्के बीसी धैर्य सूसी
1: रेक्के बीसी धैर्य सूसी
0: चुक्की मुट्टो हम्मीगे
1: चुक्की मुट्टो हम्मीगे।
0: लिख लिया?
1: हाँ।
0: सब लोग लिख लिया?
1: हाँ।
0: अच्छा तो अगला स्टैंजा दूर दूर हारी हारी
1: दूर दूर हारी हारी
0: व्योम कानुआ बगे
1: व्योम कानुआ बगे
0: हसीव मरेसी
1: हसीव मरेसी
0: वांछे मेरेसी
1: वांछे मेरेसी
0: दिगंत सेरो लघु बगे
1: दिगंत सेरो लघु बगे।
0: हाँ तो अब बच्चा आखिर स्टैंजा
1: हाँ।
0: वो भी सुना दो।
1: हाँ।
0: लिख लेते हैं।
1: हाँ।
0: याव नाडो यंथ काडो
1: याव नाडो यंथ काडो
0: हारो आसे हक्कीगे
1: हारो आसे हक्कीगे
0: मुक्त गगन नूरु काला
1: मुक्त गगन नूरु काला
0: ईजो शक्ति रेक्केगे
1: ईजो शक्ति रेक्केगे।
0: तो सब लोग एक गाना तो लिख लिया।
1: हाँ। हाँ।
0: अब इसे कैसे गाना, किस तरह गाना, ये तो मालूम हो रहा है ना?
1: हाँ।
0: अच्छा जी जरा चुपके रहना, गीता जी आ रही है दीदी।
1: हाँ?
0: हाँ। को हम रिक्वेस्ट कर देंगे।
1: हाँ? हाँ।
0: गीता जी आइए यहाँ, हमारे बच्चे सब ये गाना सीखना चाहते हैं। पहले इसके आरोह अवरोह क्या है ये बताएंगे?

0: कर्नाटक संगीत में यह चक्रवाक राग होता है और हिंदुस्तानी में इस राग को कहते हैं आहिर भैरव। इसका ताल है कर्नाटक संगीत में चतुरस्र जाति एक ताल तीसर नड़े। इस ताल को हिंदुस्तानी में कहते हैं दादरा। तो अब भैया विश्वनाथ नागपुर जी भी यहाँ आए हैं, वे तबला बजाने के लिए तैयार होके बैठे हैं। तबला बजा के दिखाते हैं ना।
1: धा दिन्ना।
0: अब आप लोगों को मालूम हो गया ना यह गाना कौन सी राग पर आधारित है। अब दीदी आपको सिखाती है ये गाना।
2: ताकी ता, ताकी ता, ताकी ता, ताकी ता, ताकी ता, ताकी ता।

हाँ, दूसरा अंतरा का धुन कैसा है ये मालूम हो गया, मगर जो स्वर आते हैं वो नहीं मालूम हुआ है ना। तो गीता दीदी स्वर को भी सिखाती हैं?

अब ये आखिर का अंतर जो है ना वो पहली अंतर था ना बान लोक नगुना का, उसी के जैसे ही है। अच्छा तो गाते हैं।

0: तो बच्चों, अब इस पूरे गाने की धुन आपको याद होगी, है ना? अब घर पे जाके खूब प्रैक्टिस करना, तो आप सब लोगों को ये गाना बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगी, करेंगे ना? अच्छा बच्चों, तो नमस्कार।
1: सामुदायिक गीत पाठ आप सुन रहे थे कन्नड़ भाषा में। अब आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

0: डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
0: हेलो डॉक्टर।
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
0: हेलो डॉक्टर।

कृष फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया, सोनू निगम, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाज़ों में। नासिर फराज के बोल थे, राजेश रोशन ने तर्ज बनाई थी।

विजय अकेला का लिखा और राजेश रोशन का संगीतबद्ध किया ये गीत आपने सुना, लकी अली और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म थी कहो न प्यार है, और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, आज शाम 6:30 बजे हम आपको अपने दिल्ली केंद्र लिए चलेंगे, जहां से आप ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनेंगे। समय याद रखिए, शाम 6:30। आकाशवाणी जमशेदपुर से हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं FM 102.4 MHz पर। शाम के 5 बजने को हैं, कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार मुख्यांश सुनिएगा हमारे रांची केंद्र से।
1: के मुख्य समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा है कि उनकी अपील पर कुछ जगहों पर देशवासियों ने एकजुटता का परिचय दिया और सोने की खरीद तथा विदेशी यात्रा को कुछ समय के लिए टाल दिया। श्री मोदी ने देशवासियों से खेती की जमीन को रसायनों से दूर रखने और ज्यादा से ज्यादा खेती प्राकृतिक उर्वरकों के साथ करने का अनुरोध किया था। उन्होंने इस अपील का समर्थन करने और हर तरह से सक्रिय सहयोग के लिए देशवासियों के प्रति आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा है कि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पलामू के मेदिनीनगर स्थित परिसदन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि मामले की जाँच के लिए विशेष जाँच दल का गठन किया गया है। रांची पुलिस को दोहरी कामयाबी मिली है। नामकुम थाना क्षेत्र के कटियातू से अवैध हथियार और गोली के साथ पुलिस ने एक अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया है। सदर DSP अमन कुमार पांडे ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गिरफ्तार शूटर पिछले 10 जून को जमीनी विवाद में गोलीकांड में शामिल था। वहीं तैमारा घाटी से रामपुर आ रहे एक बाइक सवार व्यक्ति को 4 किलोग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया है। लोहरदगा थाना पुलिस ने ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री और सेवन की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत साहिबगंज जिले में वृहद पल्स पोलियो टीकाकरण किया जा रहा है, जिसमें 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों तक बूथ में पल्स पोलियो की खुराक दी जा रही है। कल से स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर पोलियो ड्रॉप देंगे। लोहरदगा में उपायुक्त संदीप कुमार मीणा ने जिले के सदर अस्पताल परिसर में 3 दिवसीय पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान का शुभारंभ किया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: प्रादेशिक समाचार मुख्यांश का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से हो रहा था। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.4 MHz पर। शाम के 5:02 हुए हैं, युवाणी कार्यक्रम सुनिएगा, लेकिन उससे पहले यह संदेश।

युवा साथियों के लिए यह थी आज की युववाणी अंग्रेजी में यूथ टाइम्स। कार्यक्रम आपने सुना है FM 102.4 MHz पर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। शाम के 5:30 हुए हैं। हमारे केंद्र से अब सुनिए श्रमिक श्रोताओं के लिए कार्यक्रम कल कारखाने।

0: नमस्कार। इस कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को संजय प्रसाद की ओर से। श्रोता मित्रों, आज के कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। आज हम श्रम एवं नियोजन के क्षेत्र में महिलाओं के लिए कितनी संभावनाएं हैं, इस विषय पर एक वार्ता सुनवाएंगे। साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था के शिल्पकार जिन्हें कहते हैं, उनकी जयंती के अवसर पर कुछ बातें करेंगे। साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत पर भी चर्चा करेंगे और फिल्मी गीतों के माध्यम से हम आपके मनोरंजन का भी ख्याल रखेंगे। पर इन सबसे पहले हम आइए आप लोगों को एक वार्ता सुनवाते हैं श्रीमती नीली कुमारी जायसवाल से। वार्ता का विषय है श्रम एवं नियोजन के क्षेत्र में महिलाओं हेतु संभावनाएं।
1: वैज्ञानिक तकनीकी विकास और बढ़ते वैश्वीकरण ने विकास की जो संभावनाएं उपलब्ध कराई हैं, वे महिलाओं के लिए विशेष लाभकारी सिद्ध हुई हैं। इसका कारण यह है कि हमारी परंपरागत सामाजिक व्यवस्था में महिलाएं सबसे अधिक पीछे रह गई थी। सामाजिक रीतियां नीतियां ऐसी रही हैं जिसके कारण पुरुषों के लिए श्रम आधारित काम निर्धारित था और महिलाओं के लिए घरेलू कार्य। इसका परिणाम यह हुआ कि महिलाएं श्रम आधारित कार्य से अलग रह गईं। वैसे भारतीय महिलाएं हमेशा श्रम के साथ ही जुड़ी रही हैं। घर के भीतर सुबह से शाम तक उसके कार्य घंटे जोड़कर देखें तो किसी भी पुरुष से अधिक घंटे तक काम करती हैं। क्योंकि उसका यह कार्य अनुत्पादक माना जाता है, इसलिए लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। समय के साथ जनसंख्या बढ़ी और वैज्ञानिक विकास ने हमारी आवश्यकताएं बढ़ा दी। अब मनुष्य रोटी कपड़ा और आवास मात्र तक ही सीमित नहीं रह गया है। रहन सहन से लेकर पारिवारिक विकास और सामाजिक पहचान की खातिर घर में आमदनी के स्रोत बढ़ाने की आवश्यकता पड़ गई। ये बात न केवल भारत बल्कि विश्व तक में समान रूप से लागू होती है। भारतीय समाज में

और अधिक इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे यहाँ महिलाओं को घर के भीतर रखने का ही प्रचलन रहा है। आज भी कुछ जातियाँ ऐसी हैं जिनकी आर्थिक हालत चाहे जितनी ही लाचारगी भरी हो, तब भी उनकी महिलाएं खेतों पर काम करने नहीं जाती हैं। हाँ, कार्यालय, उद्योग, चिकित्सा और शिक्षा आदि से जुड़े सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार की तलाश में अवश्य ही आ गई हैं। यह समय की पुकार थी जिससे लोगों ने यह अनुभव किया कि दोनों पहियों अर्थात पुरुष और महिला मिलकर श्रम करेंगे तभी परिवार का विकास संभव है। हम इसके लिए बाध्य हो गए हैं कि महिलाएं श्रम और नियोजन के क्षेत्र में पूरे दमखम से खुलकर आगे बढ़ें। लोगों ने अनुभव किया कि महिलाओं के साहस और कार्य क्षमता पर किसी तरह का प्रश्न नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने महिलाओं को न केवल राजनीति में समानता का अधिकार दिया, बल्कि श्रम और उसके पारिश्रमिक को भी समान रूप से देखा है। सरकार ने श्रम एवं नियोजन विभाग स्थापित कर इस क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका निर्धारित करने का प्रयास किया। औद्योगिक क्षेत्रों में भी महिला श्रम आधारित कार्य कर रही हैं। इसके लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों द्वारा शिक्षण प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जा रही है और सरकारी आंकड़े बताते हैं कि श्रम एवं नियोजन के क्षेत्र में महिलाओं की संभावनाएं बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं मुख्य रूप से कृषि कार्यों में शामिल होती हैं। शहरी क्षेत्रों में लगभग 80% महिला श्रमिक संगठित क्षेत्रों में काम करती हैं, जैसे घरेलू उद्योग, छोटे व्यापार और सेवाएं तथा भवन निर्माण। महिलाओं के लिए सरकारी स्तर पर श्रम एवं नियोजन के क्षेत्र में अनेक योजनाएं बनाई गई हैं, जिनमें महिलाएं अपनी संभावना की तलाश कर सकती हैं। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि सरकारी अथवा गैर सरकारी प्रयासों में कुशल एवं अकुशल दोनों तरह की महिलाओं के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। इन क्षेत्रों की बातें करें तो हमारे सामने अकुशल महिलाओं का सवाल पहले आएगा, क्योंकि कुशल महिलाओं के लिए तो कई तरह के रोजगार मिल सकते हैं, लेकिन अकुशल महिला के लिए उसकी अपेक्षा कम अवसर मिलता है। ऐसी अकुशल महिलाएं खेती से लेकर मकान, सड़क और उद्योग आदि के निर्माण में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाती हैं। इसी तरह ईंट निर्माण उद्योग अर्थात चिमनी पर भी महिलाओं के लिए रोजगार की संभावना बनती हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में सामान्यतः आर्थिक दृष्टि से कमजोर महिलाएं अपनी भागीदारी कायम कर पाती हैं तथा समुचित सुविधाएं भी नहीं मिलती है। ऐसे गरीब घराने की महिलाओं के लिए सरकारी स्तर पर भी विशेष सुविधा देकर उन्हें श्रम से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसका कारण यह है कि पुरुष तो किसी भी जगह पर जाकर अपने रोजगार की तलाश कर सकता है, लेकिन रोजगार की तलाश में महिलाओं के लिए सब जगह जाना संभव नहीं है। श्रम के क्षेत्र में वे उन्हीं जगहों पर रोजगार की तलाश कर सकती हैं जहां उन्हें सुरक्षा की गारंटी दिखेगी। इसलिए अकुशल महिलाएं प्रायः अपने पति या परिचितों के साथ ही काम की संभावना तलाश करती हैं। इन्हीं कारणों से महिलाओं को विशेष तरह के रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। महिलाओं के रोजगार के लिए जो योजनाएं बनी हैं, उनमें ऐसे काम दिए जाते हैं जो उनके लिए सुविधाजनक हो। महिलाओं के लिए श्रम एवं नियोजन के क्षेत्र वाली रोजगारोन्मुखी योजनाओं में उन्हें यथासंभव प्रशिक्षण दिया जाता है। सिलाई कटाई या साबुन निर्माण, मोमबत्ती और दिया सलाई आदि बनाने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाता है। इसके बाद उन्हें सरकारी स्तर से पूंजी भी दी जाती है, जिसमें विशेष छूट के साथ कम दर पर सूद की व्यवस्था रहती है। इसमें महिलाओं के लिए आसान किस्त पर पूंजी उपलब्ध कराने से उनमें श्रम के प्रति आकर्षण और रोजगार की गारंटी भी संभव है। इसके अतिरिक्त घरेलू आवश्यकता पर

0: आधारित चीजों के उत्पादन एवं निर्माण में महिला का श्रम का उपयोग संभव है, जैसे आलू, टमाटर आदि पर आधारित सामान, या इसी तरह सेवई, पापड़, अचार, बड़ी आदि बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण सहित उसके बाजार उपलब्ध कराने में महिला श्रम का नियोजन संभव है। रोजगार एवं महानिदेशालय की ओर से महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजना है। इसमें अर्धकुशल, कुशल एवं उच्चतम कुशल श्रमिक के रूप में उद्योग जगत में महिलाओं के लिए रोजगार को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षक उपलब्ध कराकर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना से महिलाओं को लाभ उठाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की ओर से सुविधा दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों व क्षेत्रों में प्रशिक्षण संस्थान खोले गए हैं, जहां महिलाएं अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके, इसके लिए उन्हें हर स्तर पर प्रशिक्षण की सुविधा दी जा रही है। प्रशिक्षण पाकर महिलाएं कुशल श्रमिक के रूप में अपना रोजगार खड़ा कर सकती हैं अथवा कहीं दूसरी जगह जाकर रोजगार पा सकती हैं। यह सुखद बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजना के अंतर्गत मनरेगा आदि कार्यक्रम सामने आए, जिनमें पुरुष के साथ महिलाओं को भी श्रम एवं नियोजन में संभावना बढ़ी। इस योजना ने हजारों हजार महिलाओं को रोजगार से जुड़ने का अवसर प्रदान किया। इस तरह कहा जाता है कि श्रम एवं नियोजन के क्षेत्र में महिलाओं की संभावना दिनों दिन बढ़ती जा रही है।
1: श्रम एवं नियोजन के क्षेत्र में महिलाओं हेतु संभावनाएं, इस विषय पर अभी आप श्रोता श्रीमती नीलम कुमारी जायसवाल से उनकी वार्ता सुन रहे हैं।

आज हम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न से सम्मानित महान राजनेता पीवी नरसिम्हा राव जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हुए आज की चर्चा को जारी रखते हैं। पीवी नरसिम्हा राव का नाम भारतीय इतिहास में उस दूरदर्शी नेता के रूप में दर्ज है जिन्होंने देश को आर्थिक संकट से निकालकर विकास और आत्मविश्वास की नई राह दिखाई, इसलिए उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था का शिल्पकार भी कहा जाता है। सन 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री पद संभाला तब भारत गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था। विदेशी भंडार बिल्कुल कम हो चुका था या खत्म हो चुका था और देश के सामने आर्थिक अस्थिरता की चुनौती थी। ऐसे कठिन समय में उन्होंने साहसिक निर्णय लेते हुए आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने अपने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के साथ मिलकर, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने, उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की नीतियों को लागू किया। इन सुधारों के माध्यम से लाइसेंस राज की जटिलताओं को कम किया गया, विदेशी निवेश के लिए द्वार खोले गए और भारतीय उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया गया। इन कदमों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान की। आज भारत जिस आर्थिक शक्ति के रूप में विश्व मंच पर स्थापित है उसकी नींव 1991 में उन्हीं आर्थिक सुधारों में दिखाई देती है। सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, सेवा क्षेत्र और उद्योग के विस्तार में इन्हीं नीतियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पीवी नरसिम्हा राव केवल एक कुशल प्रशासक ही नहीं बल्कि विद्वान, बहुभाषाविद और साहित्यकार भी थे। वे अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे और भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान परंपरा के प्रति गहरी आस्था रखते थे। उनके व्यक्तित्व में राजनीति, प्रशासन और बौद्धिकता का अद्भुत समन्वय दिखता है।

के कार्यकाल में भारत की विदेश नीति को नई दिशा दी गई, लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत की गई और कई देशों के साथ संबंधों को नई मजबूती मिली। साथ ही स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने वाले 73वें और 74वें संविधान संशोधन में उनके समय ही लागू हुआ था। आज जब हम विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तब भी पीवी नरसिंह राव का योगदान और भी प्रासंगिक हो जाता है। उन्होंने दिखाया कि दूरदर्शी नेतृत्व, साहसिक निर्णय और राष्ट्रीय हित के प्रति समर्पण किसी भी संकट को अवसर में बदल सकते हैं। पीवी नरसिंह राव की जयंती पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके द्वारा स्थापित विकास, सुधार और राष्ट्र निर्माण के आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। और अब हमारे वाणी को हम यहीं विराम देते हैं और कार्यक्रम के अगले चरण में आइए हम आपको सुनाते हैं एक प्यारा सा गीत, जिसे हमने आपके लिए फिल्म छोटी सी बात से ली है। गायक कलाकार हैं यशुदास और आशा भोसले। योगेश के इस गीत को संगीतबद्ध किया है सलील चौधरी ने। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अब हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे देश की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। श्रोता मित्रों, भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अलग अलग भाषाएं, वेशभूषाएं, खान पान, रीति रिवाज और संस्कृतियां हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक, हर क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान है। फिर भी इन सभी विविधताओं को जोड़ने वाला सूत्र है हमारी भारतीयता, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस कार्यक्रम की शुरुआत देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई। इसका मुख्य लक्ष्य देश के नागरिक एक दूसरे की संस्कृति, भाषा और परंपराओं तथा जीवन शैली को भी समझ सके और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों की जोड़ी बनाई जाती है। ये राज्य एक दूसरे की भाषा, साहित्य, कला, संगीत, नृत्य, भोजन और पर्यटन स्थलों की जानकारी भी आपस में साझा करते हैं। विद्यालयों, महाविद्यालयों और विभिन्न संस्थानों में इससे जुड़े अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इससे युवाओं को देश की विविधता को नजदीक से जानने और समझने का अवसर मिलता है। जब हम किसी दूसरे राज्य की भाषा के कुछ शब्द सीखते हैं तो वहाँ के त्योहारों को भी समझते हैं और उनकी संस्कृति का सम्मान भी करते हैं। तब हम केवल जानकारी ही नहीं प्राप्त करते बल्कि दिलों के बीच की दूरियां भी कम करते हैं। यही भावना भारत को और अधिक मजबूत बनाती है। आज के डिजिटल युग में एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ गई है। सोशल मीडिया और संचार के आधुनिक साधनों के माध्यम से हम देश के किसी भी कोने की संस्कृति से जुड़ सकते हैं। ये पहल हमें बताती है कि विविधता हमारी शक्ति है, कमजोरी नहीं। महात्मा गांधी ने भी एक बार कहा था कि भारत की आत्मा उसकी विविधताओं में ही बसती है। यदि हम एक दूसरे के परंपराओं, संस्कृतियों का सम्मान करेंगे तो देश में भाईचारा, सद्भाव और राष्ट्रीय एकता और अधिक मजबूत होगी। हम सभी का दायित्व है कि हम अपने देश की सांस्कृतिक विरासत को जानें, उनका सम्मान करें और दूसरों को भी उसके बारे में जागरूक करें। जब हर भारतीय ये महसूस करेगा कि पूरे देश की संस्कृति उसकी अपनी संस्कृति है, तभी एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना पूरी तरह से साकार हो सकेगा। तो श्रोता मित्रों, आइए

आज हम सभी ये संकल्प ले कि भाषा क्षेत्र धर्म और संस्कृति के भेदभाव के भावना से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाएंगे और देश को विश्व का श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। और अब कार्यक्रम के अगले चरण में आइए सुनते हैं एक संदेश।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: और अब कार्यक्रम के अंतिम चरण में आइए सुनते हैं एक फिल्मी गीत। हम किसी से कम नहीं, जी हाँ यह नाम है फिल्म का। गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले। गीतकार है मजरू और संगीत दिया है

0: श्रमिक श्रोताओं के लिए था हमारा कार्यक्रम कल कारखाने, प्रसारण हुआ आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने को हैं, अब समाचार बुलेटिन प्रसारित होंगे बारी बारी से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु कार्रवाई उचित, उत्तरदायित्वपूर्ण और समान होनी चाहिए। सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जलवायु न्याय का मूल तत्व है। उन्होंने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां विकास समग्रता में हो और जहां अंतर्राष्ट्रीय संस्थान समसामयिक वास्तविकताओं को परिलक्षित करें। श्री मोदी ने कहा कि भारत के विजन महासागर में सेशल्स का विशेष स्थान और ये प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक ज्यादा मजबूत हुई है।
2: I came here because I believe that Seychelles occupied a special place in India's vision for the Indian Ocean. Today, as I return here after a decade, that conviction is stronger than ever. And I'm delighted to join you as you celebrate 50 years of your independence. Congratulations to you and the people of Seychelles on this special occasion.
1: श्री मोदी ने कहा कि मानचित्र में सेशल्स हिंद महासागर में द्वीपों के समूह के रूप में दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि भारत इसे ऐसे राष्ट्र के रूप में देखता है जो अपनी सीमाओं से परे है। श्री मोदी ने कहा कि ये विशेष सम्मान है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित कर रहा है।
2: President Armini and the people of Seychelles for honoring me with the guardian of the blue horizon earlier today. It will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation. I bring with me the warm greetings and best wishes of 1.4 billion people of India.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत में गांव की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत 1,00,000

0: 51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। श्री चौहान ने आश्वस्त किया कि ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों को ठोस वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई शुक्रवार को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुई ड्रोन हमले के जवाब में की गई। भारत ने एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप का कांस्य पदक जीत लिया है। अहमदाबाद में कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में भारत ने बहरीन को 3-1 से हराया। ये भारत का इस प्रतियोगिता के इतिहास में पहला पदक है। भारत ने आयरलैंड के साथ 2 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला के दूसरे और अंतिम मैच में बेलफास्ट में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत आज अपने ग्रुप मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम 4 मैच में 3 जीत के साथ ग्रुप में दूसरे स्थान पर है। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया पर जीत हासिल करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news is read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi today stated that climate action must be guided by fairness, responsibility and equity. In his special address to the National Assembly of Seychelles, Prime Minister said, "This is the essence of climate justice." He emphasized that Seychelles and India both seek a world where development is more inclusive and where international institutions reflect contemporary realities.
2: Seychelles and India both seek a world where development is more inclusive. We both seek a world where international institutions reflect contemporary realities. We believe that our shared future must be shaped collectively, inclusively and fairly.
1: Mr. Modi said Seychelles occupies a special place in India's vision for the Indian Ocean and that conviction is stronger than ever. He said the Indian Ocean does not separate India and Seychelles but connects the two countries. He addressed that it will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation.
2: Our vision is captured in the idea of Mahasagar, mutual and holistic advancement for security and growth across regions, Mahasagar. This vision recognizes that our futures are interconnected and interdependent, and we will continue to work together for a safer and more secure Indian Ocean region.
1: Prime Minister said it is a special honor to stand before everyone as the first Indian Prime Minister to address the National Assembly. He also thanked President and the people of Seychelles for honoring him with Seychelles' highest distinction, the Guardian of the Blue Horizon, earlier in the day. Union Ministers Amit Shah, S. Jaishankar, Rajnath Singh, Piyush Goyal, Manohar Lal and Jitendra Singh congratulated Prime Minister Narendra Modi on being conferred with Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. Prime Minister Modi has said that the power of public participation in nation building is one of India's greatest strengths. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani today, Mr. Modi said this spirit was once again evident after he appealed to citizens to adopt certain measures in view of the prevailing warlike situation in West Asia. Mr. Modi had urged people to avoid buying gold, postpone non-essential foreign travel and use carpooling for some time.
3: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: India today categorically rejected allegations made by Pakistan regarding the recent incident in Karachi and termed as baseless. In response to media queries, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that instead of pointing fingers at others, Pakistan should

0: हिंदी और संस्कृत हिंदी और अंग्रेजी समाचार बुलेटिनों का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हो रहा था। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:10 हुए हैं।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आप सुन रहे थे संदेश और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत। इस कार्यक्रम में आज सुनिए धनुराम मुर्मू और साथियों के स्वर में संताली लोकगीत।

0: दादी कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: झारखंड के लोकगीत कार्यक्रम में धनुराम मुर्मू और साथियों से सुन रहे हैं आप संथाली लोकगीत।

धनुराम मुर्मू और साथियों के गाए संताली लोकगीतों का आनंद ले रहे थे आप कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत में। अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:20 होने को है। कुछ पलों में आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित संस्कृत समाचार बुलेटिन सुनिएगा।

0: उत्तरोत्तरं सुरक्षितम् आत्मनिर्भरं च भवति। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना देशस्य नागरिकाणां प्रति कार्तज्ञभावं ज्ञापितम्। यतोहि जनैः स्वर्णक्रयणं विदेशयात्रा च किञ्चित् कालं यावत् स्थगिता। सेशेल्स् देशस्य विक्टोरिया नगरे आयोजितायाः प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तायाः अनन्तरं भारत सेशेल्स् देशयोर्मध्ये स्वास्थ्यं वित्तं समेत्य अन्तरिक्षादि विविध विषयेषु महत्वपूर्ण सहमतिपत्रेषु हस्ताक्षराणि अभवन्। प्रशासनेन भारतीय नागरिकाः संचेतिताः यत् ते सर्वेषाम् आवश्यकानां यात्रापत्राणां पूर्तिकया विना कैलाश मानसरोवर यात्रां न आरभेरन्। पश्चिमेशिया देशे सुरक्षा स्थितिः तीव्रगत्या अपक्षीयते, यत्र संयुक्त राज्य अमेरिका इरानः उभावपि परस्परं नूतनानि सैन्य आक्रमणानि अकुरुताम्। अपि च आईसीसी महिला T20 विश्वकप स्पर्धा मालिकायां भारतीय महिला दलम् अद्य लंडन नगरे ऑस्ट्रेलिया दलेन सह स्पर्धिशिष्ट। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य सविशेषं प्रत्यपादयत् यत् भारतेन जून मासे वैमानिकी क्षेत्रे एका महती सफलता अर्जिता, यत्र स्वदेश निर्मितस्य मेक इन इंडिया C-295 सैन्य परिवहन विमानस्य प्रथमं परीक्षण उड्डयनं सफलतापूर्वकं सुसंपन्नम्। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे जनान् संबोधयन् प्रधानमन्त्रिणा इयं सूचना प्रख्यापिता यत् सम्प्रति एतादृशानि चत्वारिंशत् विमानानि भारतदेशे एव विनिर्मीयन्ते।
1: जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्री मोदिना गदितं यत् देशे अन्ये केचन महत्वपूर्णाः प्रयासाः विधीयन्ते। अस्मिन्नेव क्रमे देहल्यां स्थितः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा डेटा साइंस इत्यादिषु आधुनिक विषयेषु BTech पाठ्यक्रमस्य शुभारम्भं विदधाति।
1: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में BTech प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी सहर्षं न्यगादीत् यत् अद्य भारतीय संस्कृतिः विश्वस्मिन् हि

0: विश्वे प्रसरति। श्रीमोदी गौरवान्वितः अस्ति यत् भारतेन अस्मिन् मासे देशस्य सुरक्षायाः आत्मनिर्भरतायाः च क्षेत्रे महती सफलता समर्जिता। सः कोलकाता नगरे आयोजितम् एकं नौसेना सम्बन्धि कार्यक्रमं सम्बोधितवान्, यत्र INS दुनागिरि, INS संशोधक, INS अग्रयश्च भारतीय नौसेनायाः क्षेत्रे समाविष्टाः। प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् भारतं समुद्रतः आकाशपर्यन्तं उत्तरोत्तरं सुरक्षितम् आत्मनिर्भरं च भवति।
1: कोलकाता में INS दुनागिरि, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
0: मोदिना अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य अपि उल्लेखो विहितः। तेन अहमदाबाद नगरे आयोजितायाः विश्व योगासन प्रतियोगितायाः विषये कथितं यत् अस्यां भारतेन 2,100 स्वर्ण पदकैः सह आहत्य 14,100 पदकानि विजितानि। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रतिपादितं यत् राष्ट्रनिर्माणे जनसहभागितायाः शक्तिः भारतस्य कृते एका महती सम्पत्तिः वर्तते।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: अनेन सहैव श्रीमोदिना प्रोदीरितं यत् आगामी गणेशोत्सवाय गणपति बप्पा भगवतः प्रतिमा अनिवार्य रूपेण अस्यैव देशस्य मृत्तिकायाः भवेत्, सा च स्थानीय कुम्भकारैः शिल्पीभिः विनिर्मिता स्यात्। तेन मूर्ति निर्मातारः अपि अनुरुद्धाः यत् ते मृण्मय मूर्तीणां निर्माणाय एव प्राथमिकतां दद्युः। स्वीय सम्बोधनस्य चरमे सोपाने प्रधानमन्त्रिणा जलसंरक्षणस्य विषये च बलं प्रदत्तम्। तेन कथितं यत् वर्षाजलस्य एकैकोऽपि बिन्दुः संरक्षणीयः वर्तते। श्रीमोदिना विशेषरूपेण गदितं यत् जलसंरक्षणार्थं कैच द रेन अभियानस्य वेगः मन्दो न भवेत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिः पैट्रिक हर्मनी च अद्य अपराह्णे विक्टोरिया नगरे द्विपक्षीय वार्ताम् अकुरुताम्। उभौ नेतारौ द्विपक्षीय सहयोगस्य सम्पूर्ण क्षेत्राणां समीक्षां कृतवन्तौ। सहैव पारस्परिकहितस्य क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयेषु च स्वस्व मनोगतं विनिमयी कृतवन्तौ। तस्मात् पूर्वं सेशेल्स देशेन प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने पर्यावरण नेतृत्वस्य सर्वोच्च सम्मानः गार्ड्स ऑफ द ब्लू होरिजन प्रदत्तः। संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् अयं गार्डियन ऑफ द ब्लू होरिजन सम्मानः मम कृते अथ भारतस्य नागरिकाणां कृते परम गौरवस्य विषयो वर्तते। प्रधानमन्त्री मोदी अवदत् यत् द्वयोर देशयोर दूरत्वं न्यूनीकर्तुं डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रभावपूर्णं माध्यमं वर्तते। तेन एतदर्थं प्रसन्नता प्रदर्शिता यत् अद्य सेशेल्स देशे भारतस्य UPI तन्त्रस्य प्रवर्तनाय एकस्मिन् सहमति पत्रे हस्ताक्षरं क्रियमाणमस्ति। विदेशमन्त्रालयेन भारतीय नागरिकाः परामृष्टाः यत् सम्पूर्णयात्रायाः कृते आवश्यकानि सर्वाणि यात्रापत्राणि विना कैलाशमानसरोवरयात्रा न क्रियन्ताम्। केचन भारतीयतीर्थयात्रिणः नेपाले अवरुद्धाः अभवन्, सहैव साहाय्यार्थं प्रार्थितवन्तः। एतां घटनामुद्दिश्य विदेशमन्त्रालयेन एषः परामर्शः प्रख्यापितः। पश्चिम एशिया क्षेत्रे सुरक्षा स्थितिः पुनरपि गभीरा जाता। अमेरिका ईरान देशयोर्मध्ये विद्यमानः युद्धविराम

0: इतिहास सिर्फ लिखा नहीं जाता, अमर हो जाता है। और आज इसी ऐतिहासिक मैदान पर भारत की बेटियां अपने विश्व कप सफर का सबसे बड़ा इम्तिहान देने उतरेंगी। सामने है 6 बार के विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, लेकिन भारत के सामने सिर्फ एक प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि सेमीफाइनल का दरवाजा खड़ा है। दक्षिण अफ्रीका की बांग्लादेश पर जीत के बाद भारत का जीतना जरूरी है। जीत तो अंतिम 4 का टिकट, हार तो विश्व कप का सपना यहीं थम जाएगा। ऐसे में हर चौका सिर्फ रन नहीं होगा, हर विकेट सिर्फ सफलता नहीं होगी, ये होगा करोड़ों भारतीय दिलों की उम्मीदों का जवाब। तो क्या लॉर्ड्स की बालकनी आज भारत के जज्बे की गवाह बनेगी? क्या ऑस्ट्रेलिया का विजय रथ रुकेगा या फिर इतिहास एक नया मोड़ लेगा? मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। फर्स्ट बॉल 20 में मेरे साथ है मेघा और हमारे साथ 3 विशेष मेहमान हैं, पूर्व क्रिकेटर ख्याति गुलानी, बीसीसीआई कोच रविंद्र सिंह और वरिष्ठ खेल पत्रकार सौमित्र बोस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।
1: नमस्कार
2: ख्याति। इंडिया हैव ट्राइड ऑल देयर 16 प्लेयर्स एंड येट द कॉम्बिनेशन डज नॉट लुक कन्विंसिंग।
3: Yeah, definitely. I mean, you must have seen that they have been trying their best in the series, but I'm sure that the best is yet to come. And the sloppy and scratchy fielding, definitely it was the, you know, reason for not performing in the previous matches. Let's see. In the coming matches, I'll see. I mean, this is very important, this match. And I'm sure that the players like Richa Ghosh and if you talk about Deepti Sharma, they are yet to perform, they are yet to give their best.
0: So, Mitro, toss mein bahut zyada samay nahi hai. Lords ki pitch ko dekhte hue bahut zyada high scoring venue nahi raha hai pichle kuch samay mein. Kya lagta hai, kya hone wala hai? Chalte hain toss ke liye.
4: India up against the number one T20 side in the world in Australia. I've got the match referee Chandray Fritz and coin toss representative as well alongside me. The coin will get passed across to Sophie Molyneux to flip it. Harman, your call.
5: Head. Be back first.
4: Heads is the call. It's fallen your way. Wait for the applause. There it is. What are you going to do and why?
5: I'm going to bat first. I think it's a very important game for us and we just thought let's just bat freely and set some decent total for us.
4: Coming off a win up north, you're now down here in London. Any changes to the side for this big clash?
5: Yes, we do have one change. Kranti is back in the side place of Nandini Sharma.
4: And why is that?
5: I think Kranti has been bowling really well and I think these kind of pitches suits her. So we just thought, let's bring her back.
4: Does recent form count for anything? Because you won a series in Australia in this T20 format as well, that semi-final as well. How much do you bring in of confidence into that?
5: Well, it's a fresh day and a fresh mind and definitely those games have given us a lot of confidence and today's the game to just enjoy ourselves.
4: Okay. We're in London but it feels like a home match.
5: Yes, definitely. I think weather is quite suiting us and let's just enjoy here.
4: All the best today, Harman.
5: Thank you.
4: So if I get you to come in, if it had fallen your way, what would you have done?
5: We actually were going to have a bowl, so it's worked out well.
4: There you go. Happy days. Phoebe Litchfield, we've heard in the press that she's back into the side. Any other changes and who's out for her?
6: Yeah, Phoebe's is back in and Alana King's missing out today.
4: And why is that? Because the two leggies have worked well for Australia so far.
6: They have, yeah. I think it's just conditions and matchups today. Kingy's bowled really well this tournament and she can still play a massive role for us moving forward over the next week or so. But yeah, excited to have Phoebe back.
4: It's been building nicely for Australia. It feels as if it's a bit of a final more so than a round game.
6: It does. It's really exciting. We've had a bit of a break before this game, so it's built up really nicely for us. And
4: Enjoy all the magic of the home of cricket.
6: Yeah, we will.
4: All the best, Soph.
6: Thanks, Josie.
4: Well, India have won the toss today and they'll be batting first in this crunch match.
0: हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीता है और भारत पहले बल्लेबाजी करेगा। सौमित्र, हम चर्चा कर रहे थे कि बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं रहा है, कैसे देखते हैं इस निर्णय को आप?
7: पहले तो दोनों कैप्टन खुश है, हरमनप्रीत बैटिंग करेंगे और इंडिया बैटिंग करेंगे और वो बॉलिंग करेंगे। और टीम चेंजेस में आपको दिख रहे हैं कि फिबी लिचफील्ड को वापस आना ऑस्ट्रेलियन टीम में बहुत इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज शी इज गॉन एन अमेजिंग स्ट्राइक रेट। 3 मैचेस नहीं खेले हैं वो अभी तक, सो ही एब्सोल्युटली फ्रेश, इंजरी थी, नहीं पाएंगे। सो दिस इज अ बिग मैच फॉर हर और शी कैन बी द इम्पैक्ट फैक्टर, जैसे आपने बोला। ये इस तरह का मैचेस में जैसे 170-180 जो रिकॉर्ड्स दिखता है लॉर्ड्स में ऐसा ही, बट इंडिया कैन स्कोर 170-180, दैट विल बी अ वेरी गुड स्कोर। हरमनप्रीत का बैटिंग इज लार्जली बिकॉज वी आर वेरी स्ट्रांग इन आवर बैटिंग, ऑल्दो इट डज नॉट रिफ्लेक्ट इन आवर स्कोरिंग, स्पेशली मिडल ऑर्डर। और हरमनप्रीत को आज शी कमिट द मैच, कमिट द वुमन, So she has to be the woman, because is tarah ka matches mein again Australia. If there is one person that Australia fears is Harmanpreet. Aur is match mein unko aaj captain's knock khelna hai ki 85 runs in 4 matches is not what the Harmanpreet we know about. So aaj ka match unke liye bahut zaruri hai aur sare team ke liye zaruri hai. Magar pressure nahi, she used the word enjoy. Let's see how much she enjoy.
2: रविंदर, हमने तब्दीलियों का जिक्र किया, आज के इस मुकाबले में भी एक बदलाव है, नंदिनी के जगह पर क्रांति गौड़ को मौका मिला है, पेस डिपार्टमेंट में खास करके स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिली है।
1: बिल्कुल, जिस हिसाब से ये जो बॉलिंग अटैक चल रही, बॉलिंग अटैक था उसमें बिल्कुल चेंजेस, हर मैच लगभग हर मैच में चेंजेस चल रहे थे, तो ये एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि विकेट मुझे लग रहा कि थोड़ा सा सीम हो रहा है, जैसे बताया हरमनप्रीत ने, तो उनको लगा क्रांति गौड़ इसमें शायद ज़्यादा परफॉर्म कर पाएगी, लेकिन जो मेन जो इनका अटैक रहेगा वो चरनी के आसपास ही घूमेगा, क्योंकि चरनी बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में है और वो एक तरह का मैच डिसाइड करती है कि मैच किस तरफ पड़ा, मैच का पड़ा किस तरफ मुड़ता है।
0: ख्याति, अगर दोनों टीमों की बात करें तो 38 T20 मुकाबले दोनों टीमों के बीच हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 27 जीते हैं, भारत ने 10 में विजय प्राप्त की है और एक मैच बेनतीजा रहा है, परिणाम नहीं निकला है। जब आप ऑस्ट्रेलिया के सामने होते हैं और ये वर्चुअल क्वार्टर फाइनल हम इसे कह सकते हैं, किस तरीके का टोटल होता है, क्या जो टीम मीटिंग टॉस जीतने के बाद होगी उसमें इस पर चर्चा होगी, चूंकि आप कोच भी रह चुकी हैं डोमेस्टिक सर्किट में, या फिर ये होगा कि पहले पावर प्ले देखते हैं उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे?
3: डेफिनेटली उन्होंने डिस्कस तो किया होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि विदाउट एनी टारगेट दे विल गेट इन टू द पिच डायरेक्टली, बट आई थिंक इट विल बी कॉन्टेस्ट फ्रॉम स्टार्ट, बॉल टू बॉल कॉन्टेस्ट होगा बिटवीन बोथ द टीम्स, बैटर टू बॉलर एंड बॉलर टू बैटर, एंड आई थिंक 160-170 शुड हैव बी अ गुड स्कोर, दे मस्ट हैव डिस्कस दिस थिंग, अदरवाइज यू विल नॉट गिव द क्वेश्चन टू योर बोलर्स, यू हैव टू गिव द क्वेश्चन टू योर बोलर्स ऑल्सो, आपको अगर उस तरीके की गेम खेलनी, आपको हमेशा सेट होने, अगर सेट होते आपके बॉलर्स या आपके बैटर्स, डेफिनेटली आई थिंक तब आप ये सोच सकते हो कि वहाँ जाके आप पावर प्ले देखें, लेकिन अभी तक कुछ भी सेट नहीं है पावर प्ले में, एवरी टाइम इनका जो स्कोर है उस तरीके का नहीं चल रहा कि जैसा एक्सपेक्टेड है, जो द वे वी ऑल्सो टॉक टू द प्लेयर्स कि आपका 6 ओवर्स में 50 रन हो इस तरीके से, बट आई थिंक एक 160 का स्कोर एक पार, आई थिंक इट विल बी अ गुड स्कोर।
2: Sumitro, heading into the World Cup, the concern was more around the openers because they were struggling in that series against England, but now it's more around the wobbly middle order.
7: Absolutely, because if you see, first of all, you have to forget what you've done in the last 4 matches, especially, you know, when you play in Netherlands, and they are more like warm matches with all regards to those teams. But the point today is the big match. Aur agar aap is level pe matches dekhe, India have always lost these kind of matches against Australia. It doesn't mean, again, history does not mean anything else. But the point is this, aaj agar aap dekhega, who bats at number 3, who bats at number 4, where does Harmanpreet bat? Up 6, she has batted at 6, she has batted upper. So ye, India have got a very unsettled look about them, which is very, very striking for a team that has won a World Cup. And the coach at the core of the team remains the same. The coach remains the same. In spite of that, we still don't know. Aapne jaisa pehle bola ki 16 players hum 4 matches mein khila diye. That means that's not a good sign. Plus, you know, there are other concerns, fielding concern. But I would like to see who bats at number 3. I'm assuming ki South Africa, which was the biggest match so far, who bats, Yastika batted there. She's a left-hander aur unke paas leg spinners bahut hain. शायद ये बैटिंग देखेंगे, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी वेयर डज हरमनप्रीत बैट, हाउ मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक्स, बिकॉज व्हेन द कैप्टन टेक्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड शी स्कोर्स द रन्स, आई थिंक दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। और ओपनर्स जैसे आपने कहा, दे आर फेयरली ऑलराइट, स्मृति मंदाना इज अमंग द टॉप स्कोरर्स, शिफाली इज गॉट रन्स, बट यस, द परफॉर्मेंस ऑफ द मिडल ऑर्डर विल बी वेरी वेरी क्रिटिकल।
0: रविंदर, अगर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएं, जेमिमा की भी फॉर्म इस पूरे टूर्नामेंट में सवालिया निशान पर रही है, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यास्रिका भाटिया और भारती फूलमाली में भी चर्चा हो रही थी कि शायद उनको इस मैच में वापस लाया जाए प्लेइंग 11 में, लेकिन यास्रिका के साथ गई है हरमनप्रीत कौर की टीम। अगर हम बात करें किस तरीके का टीम में माहौल होगा इस समय, चूंकि नंबर थ्री, नंबर फोर और नंबर फाइव कहीं ना कहीं अनसर्टेन रहा है इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया का?
1: बिल्कुल अनसर्टेन रहा है, तभी ये मैच, ये जो टूर्नामेंट है इस कंडीशन में आया है। आप देख रहे हैं 15-16 लोग खेल रहे हैं। नॉर्मली अगर आपकी एक कॉम्बिनेशन बना रहता है तो 11-12 लोगों में ही काम टूर्नामेंट पूरा चल जाता है। बहुत कम होता है कि आप 15-16 लोगों में खेलिए। बैटिंग में दिक्कत रही है इसमें भी, लेकिन जो बैटिंग लाइनअप है ऑन पेपर तो बहुत स्ट्रांग है, पर यह है कि अब उस स्ट्रॉन्ग को उसको अब एग्जीक्यूट करना है, और इससे आज से बड़ा ये मौका कभी मिल नहीं सकता। आज इनको पता डू और डाई है, आज नहीं करेंगे तो फिर आप पैकिंग करेंगे।
2: ख्याति, इन द गेम अगेंस्ट बांग्लादेश दो जमीमा गॉट सम रन्स, बट इन द थ्री प्रायर गेम्स शी स्ट्रगल्ड। इज शी समबडी हु वांट्स दैट रोल क्लैरिटी, दैट पोजीशन क्लैरिटी?
3: सी डेफिनेटली, अगर आप ऋचा घोष की बैटिंग देखेंगे तो उनको हमेशा थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। अगर आप उसको अप द ऑर्डर भेजेंगे, डेफिनेटली शी कैन शो यू गुड परफॉर्मेंस एंड शी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स अ गुड टोटल। बट उसके अगर आप बार बार डाउन चेंज करेंगे, इतने प्रैक्टिस मैचेस हुए हैं उसमें भी आपको समझना चाहिए कि उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। और जैसे ही उसको टाइम मिलता है, लास्ट वर्ल्ड कप में भी आपने देखा होगा वन डे वर्ल्ड कप था, जैसे ही उसको टाइम मिला एंड शी गेव गुड कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द गुड टोटल। इतना

आनंद अपनी नौकरी छोड़कर मुंबई आ गए। श्रोताओ, बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग का फील्ड छोड़कर फिल्मी दुनिया में करियर बनाया है। आनंद एल राय भी उनमें से एक हैं। मुंबई आकर आनंद राय ने अपने बड़े भाई रवि राय, जो कि उस समय टीवी धारावाहिकों का निर्देशन कर रहे थे, उन्हें असिस्ट करना शुरू कर दिया। पर्याप्त अनुभव प्राप्त करने के बाद आनंद ने अपने निर्देशन की शुरुआत की। ये यूं कहिए कि आनंद ने बतौर निर्देशक अपना डेब्यू किया साल 2007 में साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म स्ट्रेंजर्स के साथ। यहाँ आपको बताते चलिए कि फिल्म स्ट्रेंजर्स अल्फ्रेड हिचकॉक की स्ट्रेंजर्स ऑन अ ट्रेन पर बेस्ड थी, लेकिन आनंद राय की ये डेब्यू फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह लुढ़क गई, जिसमें जिमी शेरगिल, के मेनन, नंदना सेन, सोनाली कुलकर्णी जैसे कलाकार थे।

2008 में जैकी श्रॉफ और परमीत सेठी अभिनीत आनंद राय की अगली फिल्म आई थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू नहीं चला पाई और दर्शकों ने भी इस फिल्म को नकार दिया।

बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म देने वाले आनंद एल राय, इनके साथ अब कोई निर्माता काम करने को तैयार नहीं था। लगातार फेलियर होने पर आनंद राय ने हार तो नहीं मानी, लेकिन हाँ, 3 साल का ब्रेक जरूर ले लिया। इन 3 सालों के ब्रेक के बाद आनंद राय के करियर का टर्निंग पॉइंट आया साल 2011 में, जब उन्होंने तनु वेड्स मनु फिल्म के निर्देशन के साथ अपनी ग्रैंड वापसी की और हर किसी को अपने डायरेक्शन का दीवाना बना दिया।

आर माधवन और कंगना रनौत अभिनीत ये फिल्म आनंद राय की पहली कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म थी, जिसने दुनिया भर में जबरदस्त कमाई की। दर्शकों ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया।

आनंद राय बॉलीवुड के उन गिने चुने डायरेक्टर्स में से हैं, जो रीमेक के दौर में नई और असल कहानियों पर काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। वो खुद भी बड़े सिंपल अंदाज में जीवन जीते हैं। साथियों, उनका कहना है कि अगर वो साधारण जिंदगी नहीं जिएंगे तो अपने अंदाज में फिल्में नहीं बना पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं साल 2013 की। इस साल आनंद राय ने अपने निर्देशन में दूसरी कमर्शियली हिट फिल्म दी रांझणा, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। इस फिल्म के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर के ऑपोजिट साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार धनुष ने बॉलीवुड में अपनी एंट्री की, जिन्हें दर्शकों ने तहे दिल से स्वीकार किया और इस फिल्म में अभिनेता धनुष के अभिनय की भूरी भूरी प्रशंसा हुई।

0: कैसी है।
1: आपको बता दें कि फिल्म रांझना दुनिया भर में करोड़ों की कमाई करने वाली साल की 10वीं सबसे ज्यादा कमाऊ हिंदी फिल्म थी। इस फिल्म के लेखन और निर्देशन की बहुत सराहना हुई और फिल्म रांझणा ने फिल्म फेयर अवार्ड के लिए आनंद एल राय को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अपना पहला नामांकन दिलाया।

संगीत सुनने के शौकीन बॉलीवुड प्रोड्यूसर डायरेक्टर आनंद एल राय हिंदी सिनेमा में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म्स के लिए जाने जाते हैं। साल 2015 में आपने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स का निर्देशन किया, जो फिल्म तनु वेड्स मनु का सीक्वल था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही। दर्शकों से इस फिल्म को भरपूर प्यार और सराहना मिली। ये फिल्म साल की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी, जिसने दुनिया भर में करोड़ों में जबरदस्त कमाई की। खास बात ये रही साथियों कि अपनी रिलीज के समय भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये महिला प्रधान फिल्म थी। आनंद राय की इस तीसरी जबरदस्त सफल फिल्म ने उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में अपना दूसरा नामांकन दिलाया।

आनंद एल राय को सफलता काफी उतार चढ़ाव के बाद मिली। भारतीय सिनेमा में कई निर्देशक हैं, लेकिन चर्चा में कुछ ही रहते हैं जिनमें आनंद एल राय का नाम भी शामिल है। तनु वेट्स मनु, रांझणा, तनु वेट्स मनु रिटर्न्स जैसी हिट फिल्म्स के निर्देशक आनंद एल राय बॉलीवुड के मशहूर निर्देशकों में से एक हैं।

आपने साल 2018 में शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ जैसे ए लिस्ट स्टार कास्ट के साथ फिल्म बनाई जीरो। और साथियों, आनंद राय की पिछली सफल फिल्मों के कारण रिलीज से पहले हाई प्रमोशन के बावजूद आनंद राय की ये फिल्म कुछ खास नहीं चल सकी।

श्रोताओं, आनंद राय न केवल निर्देशक हैं, बल्कि वो एक सफल निर्माता भी हैं। उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस कलर येलो प्रोडक्शंस के बैनर तले नील बटे सन्नाटा, हैप्पी भाग जाएगी, मन मर्जियां, तुम बाट, अतरंगी रे, रक्षाबंधन, शुभ मंगल सावधान जैसी कई फिल्मों का निर्माण किया है। फिल्म अतरंगी रे की बात की जाए तो ये फिल्म साल 2021 में आई, जो एक रोमांटिक फैंटेसी कॉमेडी थी। आनंद राय निर्देशित इस फिल्म में धनुष, सारा अली खान और अक्षय कुमार मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म को कोविड के दौरान लॉकडाउन के कारण सिनेमाघरों में रिलीज किए बिना डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज किया गया, जिसे दर्शकों की, आलोचकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया और समीक्षा मिली।

साल 2022 में अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को लेकर आनंद एल राय ने फैमिली कॉमेडी फिल्म रक्षाबंधन निर्देशित की।

और अब साल 2025 में आने वाली फिल्म तेरे इश्क में, जो सीक्वल है फिल्म रांझणा का और जिसके निर्माण और निर्देशन का दारोमदार है आनंद एल राय पर, देखना ये होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचाती है। तो हमें इंतजार है आनंद एल राय की आने वाली फिल्मों का। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था हिंदी सिनेमा के जाने माने निर्माता निर्देशक आनंद एल राय पर। शोध, आलेख और स्वर शिफाली कपूर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। आज के फनकार।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जमशेदपुर का विविध भारती केंद्र FM 100.8 MHz पर। रात के 10 बजने को ही श्रोताओं, छाया गीत प्रोग्राम बस थोड़ी ही देर में।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। पंचम के गानों का अपना एक संसार है, कुछ चुलबुले गाने, कुछ उदास जो आंसुओं की नमी से भीगे हैं, कुछ ऐसे गाने जिनमें जोश छलक छलक पड़ता है, कुछ ऐसे गाने जिनके कंधों पर सर रखकर आप अपने डूबे हुए दिल को सहारा दे सकते हैं। पंचम गानों के जादूगर थे। आज के छाया गीत में पंचम के कुछ ऐसे गाने जिन्हें सुनकर आप पंचम को खूब मिस करेंगे, बेकरार होकर याद करेंगे।

तो बीतते जाते हैं पल, कैलेंडर के पन्ने बदलते चले जाते हैं। जाने क्यों कुछ पल कभी बीतते नहीं, वो मन के आकाश पर ठहर जाते हैं, बर्फ बन जाते हैं कुछ लम्हे। वो न कभी अतीत बनते हैं, न कभी यादों में तब्दील होते हैं। वो लम्हे बस मन के कैनवस पर धड़कते चले जाते हैं।

आंखों में सपने भी होते हैं और आंसू भी। दुनिया भर के दुख, धोखे, तकलीफें, अफसोस जमा होते रहते हैं मन के किसी कोने में। समझ में नहीं आता कि कब कैसे ये सारा दुख घुलेगा। फिर किसी दिन बहता है जीवन का सारा दुख आंखों से। आंखों में सपने भी होते हैं और जीवन का ये खारापन।

इंतजार का दायरा बढ़ता चला जाता है, इंतजार की परछाई बड़ी होती चली जाती है। कभी कभी ये इंतजार खत्म ही नहीं होता। दिन बोझिल होते चले जाते हैं, शामें उदास हो जाती हैं और रातें एकदम सुनसान। जिसका है इंतजार, जब वो मिल जाए तो खिल उठता है दिल, चमक जाते हैं लम्हे और महक उठते हैं।

गानों का अपना नशा होता है। जरूरी नहीं है कि ये गाने हमें बार बार सुनाई ही पड़ें। कई गाने सुने बरसों हो जाते हैं, फिर अचानक किसी गाने की कोई लाइन कहीं सुनाई पड़ जाती है और अटक जाता है मन। गानों के

जब निकले अपने घर से तो एक अलग ही तरंग होती है मन की। घर से निकलते ही मन सारी उलझनों से बाहर निकल आता है, फिर हम गुनगुनाना शुरू करते हैं। सफर में हूँ तो अलग ही गाने जुबां पर आते हैं।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।